0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: 101.9.
1: ऑल राइट फोक्स, तो आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है. मैं हूं आपका रेडियो मैन, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे शो में जिसका नाम है अप बीट. 11 बजे से 12 बजे के दरमियान हम यहां पर आपके लिए प्रस्तुत करेंगे ढेर सारे हिंदी गाने और कुछ थीमेटिक चीजें भी. आज का जो दिन है वो इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी डे है और वर्ल्ड पोस्ट डे. साथ ही साथ आपने न्यूज में सुना भी होगा आज वर्ल्ड एग डे भी है. तो प्रोटीन का एकमात्र बहुत ही सस्ता और शानदार सा जो आपकी गजा और आपकी अफजाइश के लिए मशहूर है वो है एग. सो टेरिटोरियल आर्मी रिमाइंड्स अस सिटीजंस सोल्जर्स स्पेशली बैलेंसिंग सिविलियन लाइफ विद द मिलिट्री ड्यूटी. और वर्ल्ड पोस्ट डे पर क्योंकि हम सेलिब्रेट करते हैं हम्बल पोस्टमैन को, तो इस बुधवार को मैंने एक फिल्म देखी और मुझे बहुत ही शानदार लगी. डायरेक्ट किया था जैक ताटी ने, फ्रेंच डायरेक्टर है, और जिसका नाम है जोर द फेट यानी कि द बिग डे. इट वाज ऑल अबाउट द पोस्टमैन इन द फ्रांस. तो मुझे उससे याद आया कि हिंदी फिल्मों में भी काफ़ी पोस्टमैन का किरदार है. वो ना सिर्फ खत और आपके लेटर्स देते हैं बल्कि आजकल तो कुछ भी चीज़ व्हाट्सएप पर चल जाती है. टुडे इज ऑल्सो द वर्ल्ड स्पेस वीक. इंडिया इसरोस अचीवमेंट रिमाइंड्स अस कि हम सिर्फ हैदराबाद की ट्रैफिक में नहीं बल्कि स्पेस में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं. सो दिस आर इज ऑल अबाउट एनर्जी ऑब्जर्वेंसेस एंड कनेक्टिंग द डॉट्स बिटवीन लोकल एंड द ग्लोबल. तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए और हम आपके लिए शुरू करते हैं हमारा बहुत ही अहम सा गाना. तो वैसे पोस्टमैन को हिंदी में क्या कहते हैं? डाकिया. और वो क्या लेके आता है? डाक. तो डाकिये की डाक आई है और पलकों की छाव में इस फिल्म से ये गाना किशोरदा की आवाज़ और राजेश खन्ना ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अदाकारी की.

चलिए, इससे मुझे एक सवाल की इजाजत मिल गई है कि कितने दिन पहले आपको किसी डाकिये ने, किसी पोस्टमैन ने चिट्ठी दी, या फिर ज्यादातर आपकी चिट्ठियां आजकल व्हाट्सएप पर आ जाती हैं, या फिर ईमेल के थ्रू आ जाती हैं, या फिर कोरियर के थ्रू आ जाती हैं। तो एक पोस्ट ऑफिस की जो पूरी प्रक्रिया है, यानी कि एक सिस्टम जो गांव के कोने कोने में चिट्ठियां पहुंचाता है, वो सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता खत्म भी हो रहा है, जहां पर हम नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, हम याद कर रहे हैं एक ऐसे सिस्टम को कि एक शानदार से ह्यूमन सिस्टम की इजाद हुई थी एक

पर्सन, एक कोई रोबोट नहीं, कोई एक मैकेनिकल डिवाइस नहीं, बल्कि खुद एक आदमी, एक पर्सन आपके घर पर आके आपके दस्तक पर, और दस्तक देकर आपको अपनी चिट्ठी या फिर मनी ऑर्डर या फिर काफ़ी चीज़ें दे रहा है। शायद ही ऐसा कोई सिस्टम बिल्ट हुआ हो जो इतना करीब से हो सकता है ना कमाल की बात। मेरे देखे तो नहीं है, और शायद आपके पास अगर है तो आप हमें व्हाट्सएप पर ज़रूर बताएं। तो आज हम चाहते हैं कि ढेर सारे गाने, और हमारी हिंदुस्तानी फिल्मों में बेशुमार गाने हैं जो डाकिया, चिट्ठी, ख़त और इस पर आधारित है। तो आज का जो अहम शो है हमारा अपबीट का, वो उसका मकसद भी ये है कि कुछ ऐसी चीज़ों को याद किया जाए। एंड टुडे इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड एग डे एंड आर्मी डे एज वेल एज द वर्ल्ड स्पेस डे। सो टुडे इज़ इन अपबीट आर वी आर ट्राइंग टू सेलिब्रेट एंड कनेक्ट फ्रॉम खत टू अंडा, फ्रॉम सितारे टू सिपाही। तो 9 अक्टूबर ब्रिंग्स अस वर्ल्ड पोस्ट डे, वर्ल्ड एग डे, वर्ल्ड स्पेस वीक एंड ऑल्सो लुक अहेड टू द आर्मी डे। तो आज हम गाने को कुछ थीम्स बनाते हैं। एक खत जो दिल तक पहुंचता है, एक अंडा जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, एक सितारा जो आसमान तक है, और एक सिपाही जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है। तो पलकों की छाँव से आपने गाना सुना। द मूवी वॉज ड्रामेटिक, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, वीविंग द थीम्स ऑफ लव, सेक्रीफाइस एंड रिलेशनशिप। और ऑन वर्ल्ड पोस्ट डे पर डाकिया का गाना बहुत ही अहमियत का हामिल है। दिस सॉन्ग रिमाइंड्स अस ऑफ द टाइमलेस रोल ऑफ डाकिया, द ब्रिज बिटवीन हार्ट्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं। डाकिया डाक लाया से हम उन सभी पोस्टमैन को सल्यूट करते हैं जिन्होंने हमें एक बेहतरीन सिस्टम दिया। तो एक खत सिर्फ कागज़ नहीं, एक रिश्ता है। तो आइए दूसरा गाना सुनते हैं, और इस बार हम गाने जो लिए हैं वो है आपके हर एक रामा हर एक कृष्णा फिल्म से, फूलों का तारों का सबका कहना है। और इसमें भी कहीं ना कहीं एक पैगाम और एक मैसेज ज़रूर है जो डाक के ज़रिए भी मिलता है।

वेल टू बैक टू बैक अमेजिंग सॉन्ग्स दैट यू हैव लिसन टू फॉर क्या कहना. आज वर्ल्ड पोस्ट डे है. वी आर सेलिब्रेटिंग द टाइमलेस जेम्स ऑफ बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा जिन्होंने डाकिए को पोस्टमैन को एक बड़ी अहमियत दी. दे हैव टर्न द लेटर्स इन टू मेलोडीज. जो ऐसे नगमे जो लगता है कि वाकई एक अहम किरदार और दूसरी चीज़ें करते हैं. एक तरफ है दोस्ती और एक तरफ है परिवार का रिश्ता और दूसरी तरफ है मोहब्बत का इजहार. तो हमने दो गाने सुने. जैसे पहला जो गाना था कि फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है. ये दरअसल डायरेक्टली लेटर्स से ताल्लुक़ नहीं है लेकिन ये हमेशा एक रेडियो डेडिकेशन रहा है फैमिली के संबंधों के बारे में, रिश्तों के बारे में, कनेक्शंस के ताल्लुक से. और कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट देता है, वो सेंटिमेंट देता है राइटिंग अबाउट होम. तो जब राइटिंग की बात आती है तो हरे रामा हरे कृष्णा का 1971 का गाना ज़रूर याद आता है. फिर उसके बाद लिखे जो ख़त तुझे, कन्यादान का फिल्म 1968 में एक रोमांटिक क्लासिक वेयर लेटर्स बिकेम लव सॉन्ग्स. है ना कमाल की बात. तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से खुद देवानंद ने इसे डायरेक्ट किया था हरे रामा हरे कृष्णा को. और यहाँ पर आप देखेंगे लिखे जो ख़त तुझे एक रोमांटिक ड्रामा है शशि कपूर और आशा पारेख के दरमियान, डीलिंग विद द लव सैक्रिफाइस सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस. मोहम्मद रफ़ी साहब ने बड़े ही दिलकश अंदाज में इसको एवर ग्रीन मेलोडी बना दिया. ही हैज़ टर्न द लेटर इन टू अ लव सॉन्ग. कोई ख़त को अगर प्यार का तोहफा बना दे तो कैसा लगता है. The lyrics describe how every written word becomes a verse of devotion. This song is the perfect tribute, showing how letters are not just communication or means of communication, but they are also

0: फिल्ड विद पोएट्री, रोमांस, लव एंड मेमोरी, है ना? तो आपकी नज़र में कौन सा लव सॉन्ग आपको याद आ रहा है, या कौन सा ऐसा गाना याद आ रहा है जो पोस्टमैन, आज क्योंकि वर्ल्ड पोस्टमैन डे है, तो आप हमें बताइए जल्दी से. एंड दैट विल ऑल्सो हाईलाइट द पावर ऑफ लेटर्स, वेदर फैमिली बाउंड्स आर रोमांटिक. तो आगे बढ़ते हैं और हम सुनते हैं हमारा अगला गाना, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक.
1: మొదలు పెడదామా ఇన్వెస్టింగ్ పాఠాన్ని?

ऑलराइट दोस्तों, तो चिट्ठियों का जो सिलसिला है और आज क्योंकि वर्ल्ड पोस्टमैन डे है तो इस वजह से हमने कुछ ऐसे खतूत को आपके सामने पेश किया जो कि मोहब्बत का इजहार भी करते थे, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। और 11:30 बजे से आपको जैसे पता है कि हमारा जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत, जहाँ पर फैशन, टेक्सटाइल्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी काफ़ी चीज़ें हम बात करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ जाइए एक भारत श्रेष्ठ भारत में। फ्राइडे का जो थीम है वो है फैशन, टेक्सटाइल और लाइफस्टाइल। सो इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है कि दैट इज स्टिच इन टू फैब्रिक्स, चाहे वो बनारसी सिल्क होने दीजिए, पोचमपल्ली होने दीजिए, या फिर इक्कत तेलंगाना का होने दीजिए, या फिर कांचीपुरम की साड़ियाँ तमिलनाडु से होने दीजिए। हैदराबाद चारमीनार के आसपास भी काफ़ी हैंडलूम्स के बाज़ार आपको नज़र आते हैं। फैशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट ग्लैमर, इट्स हेरिटेज, और इसी हेरिटेज को हम आज आगे बढ़ाते हैं और राजस्थान से जुड़ी फैशन

और टेक्सटाइल और लाइफस्टाइल की जो चीज़ें हैं वो हम एक्सप्लोर करेंगे. हाउ थ्रेड्स टेल स्टोरीज, हाउ फैब्रिक्स क्रिएट सेंचुरीज ऑफ ट्रेडिशन, एंड हाउ हैदराबादीज कैन ऑल्सो वेयर दोज कल्चर एंड टेक दैट प्राइड. चाहे वो राजस्थान की चोली होने दीजिए, घाघरा होने दीजिए, घूमर होने दीजिए, वो रॉयल्टी के बात ही कुछ और है. जब वो हैदराबाद की गलियों में पहन कर निकलते हैं तो कैसा लगता है ना कमाल की बात. तो आगे बढ़ते हैं, एंड दैट्स गोइंग टू बी एक भारत श्रेष्ठ भारत. दैट्स द सॉन्ग.

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: दोस्तों एक बार तैयार हो जाइए. वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल एडिशन ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत रेनबो एफएम पर 101.9 के माध्यम से. टुडे वी स्टेप इनटू द रॉयल कॉरिडोर्स ऑफ राजस्थान. इमेजिन द डेजर्ट सन रिफ्लेक्टिंग ऑफ वाइब्रेंट घाघरास ओढ़नीस टर्बन्स ईच स्टिचिंग एंड टेलिंग अ स्टोरी ऑफ करेज एंड कलर. राजस्थान के फैशन जो है वो एक लिबास नहीं है, वो एक क्लोदिंग नहीं है, वो एक आइडेंटिटी वोवन इनटू थ्रेड्स ऑफ ट्रेडिशन है. राजस्थान की फैशन का जो सफ़र है वो दुनिया की एक रंगीन और एक जादू भरी नगरी से आया है. घाघरा और ओढ़नी की झलक जहाँ पर मिलती है वहीं पर मिट्टी की खुशबू भी है, पगड़ी भी नज़र आती है और कपड़े ही नहीं बल्कि वो एक शान और शौकत राजपुताना विरासत को ज़िंदा रखती है. है ना कमाल की बात. तो एक मुझे फिल्म का गाना याद आ रहा है जो कि मैं चाहता हूँ कि आप सुनें और हमारी इस थीम के साथ जुड़ जाएं. एंड दैट इज़ फ्रॉम द मूवी लम्हे में से हमने ये गाना लिया है लता मंगेशकर की आवाज़ में, मोरनी बागा मान. चलिए सुनते हैं.

दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि इतनी खूबसूरत जो उनके नाज़ो अंदाज़ है, नाज़ो नखरे हैं, वो सब कुछ बरकरार रहते हैं, एंड उसकी शान और शौकत कुछ और निराली है. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द एंटायर टेक्सटाइल लाइफ स्टाइल एंड फैशन ऑफ राजस्थान. जब कभी राजस्थान का जिक्र आता है तो लबों पर और फिर दिल में वो जो लूम्स ऑफ जयपुर है, जो डाइज ऑफ जोधपुर है, राजस्थान के टेक्सटाइल इज नथिंग बट अ कलाइडोस्कोप. बंधनी के जो रंग है, लहरिया वेव्स है, संगनेरी के जो ब्लॉक प्रिंट्स है, ईच प्रिंट इज अ डेजर्ट सॉन्ग कैप्चर्ड ऑन अ क्लोथ. ऐसा लगता है कि किसी ने साड़ी पर एक कहानी बोल दी है. दीज आर्ट जस्ट द फैब्रिक्स बट दे आर द लिविंग कैनवसेस ऑफ द हेरिटेज. बंधनी के डॉट्स होने दीजिए, लहरिया के लहराते रंग होने

दीजिए या फिर उनकी नक्श निगार होने दीजिए, ये सब कुछ राजस्थान के कपड़ों में एक कहानी लिखते हुए हर कपड़े की एक दास्तान है जो बाजार से महफिल तक चलती है। अगर आप लाइफस्टाइल की बात करेंगे तो लाइफस्टाइल और आइडेंटिटी इतनी खूबसूरत है कि राजस्थान की ज़िंदगी एक रंगीन सफ़र है जहाँ मिट्टी के घर हैं और शीशे के महल हैं, साथ ही साथ खड़े हैं वहाँ पर कुंदन, मीनाकारी, जादुई गहने, और सिर्फ जेवर नहीं, ये विरासत है जो उन्हें मिली है। हिंदुस्तान में एक भारत श्रेष्ठ भारत की अगर बात की जाए तो राजस्थान का एक आला मुकाम है। उसका मकाम इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ की जो तर्ज ज़िंदगी है, यहाँ का जो फैशन है, यहाँ का जो टेक्सटाइल है, सदियों पुराना है और आज भी बरकरार है। तो अपनी बहुत ही कम सी जो ज़िंदगी है उसमें अगर आपको कुछ लाइफस्टाइल के ऐसे नमूने मिल जाएं तो शानदार रहेगा, है ना कमाल की बात। सो लेट्स सेलिब्रेट एक भारत श्रेष्ठ भारत। राजस्थान रिमाइंड्स अस दैट फैशन, टेक्सटाइल्स एंड लाइफस्टाइल्स आर नॉट जस्ट अबाउट स्टाइल्स, दे आर अबाउट स्टोरीज। तो इसी स्टोरीज को हम मद्देनजर रखते हुए कुछ और गाने आपके लिए आ रहे हैं, तो लीजिए सुनिए एक अहम गाना। और ये जो गाना आ रहा है हमने लिया है फिल्म डोर से। डोर एक राजस्थान की स्टोरी है। नगेश कुकनूर जो कि हैदराबाद के ही डायरेक्टर है, उन्होंने काफ़ी खूबसूरती से, मैं कहूँगा कि केसरिया बालम का ये गाना प्रस्तुत किया है। केसरिया बालम और पधारो मारे देश, ये है गाना।

और क्या कहना, राजस्थान की इस खूबसूरत सी आवाज़ में आपने वहाँ की मिट्टी की जो खुशबू है उसको सुना, और मुझे उम्मीद है कि करसान सगाटिया की आवाज़ में जो आर्टिस्ट ने गाना गाया आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत में आप हमारे साथ हैं। आज का जो थीम है वो है लाइफस्टाइल, आइडेंटिटी, टेक्सटाइल एंड क्राफ्ट, और साथ ही साथ फैशन, हेरिटेज वगैरह, और फोकस है राजस्थान। घाघरा और ओढ़नी, दैट इज ट्रेडिशनल वुमेन्स अटायर, वाइब्रेंट विद द मिरर वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी। घाघराज आर लॉन्ग स्कर्ट्स ऑफन पेयर्ड विद ओढ़नीज, दीज आर द व्हील्स इन कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स। पगड़ी, जो कि हम टर्बन के रूप में भी देखते हैं, मेन्स फैशन स्टेटमेंट एंड सिंबल ऑफ ऑनर। ईच रीजन हैज इट्स ओन स्टाइल, जैसे जयपुरी पगड़ी है, सफा भी कहते हैं, जोधपुरी पगड़ी, उदयपुरी पगड़ी, और इसके रंग बिरंगे कलर्स और देन टाइम स्टाइल भी जुदा होते हैं। इट ऑल्सो सिग्निफाइज लॉट्स ऑफ ओकेजन, प्राइड, कास्ट, काफ़ी चीज़ें उसमें नज़र आती हैं। अगर ज्वेलरी की बात की जाए राजस्थान में फैशन की, तो कुंदन से लेके मीनाकारी और जड़ाऊ राजस्थान का एक सिग्नेचर स्टाइल रहा है। एवरी नेकलेस, बाजू बंद होने दीजिए, दैट्स ऑल्सो द आर्मलेट्स एंड द बोरला, राउंड मांग टीका आर यूनिक टू राजपुताना फैशन, है ना। राजस्थान की फैशन इज लाइक अ डेजर्ट रेनबो। घाघरा और ओढ़नी के रंग, पगड़ी की शान और कुंदन के गहने, हर पहनावा एक कहानी है जो राजपुताना की विरासत को जिंदा रखता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में राजस्थान के ताल्लुक से कुछ चुनिंदा जो हमने फैशन की चीज़ें ली, टेक्सटाइल की बातें की, आइए उसी पर आधारित एक गाना सुनते हैं, घूमर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद को 13,358 वोट मिले, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 4,876 वोट मिले। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे है, जबकि तमिलनाडु में सत्ताधारी मधुरांतकम में टीवीके और धारापुरम में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आगे है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार तमिलनाडु विधानसभा के मधुरांतकम और दारापुरम उपचुनावों में सत्ताधारी टीवीके पार्टी दोनों सीटों पर आगे चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े चार डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़ें।

0: जिससे फर्जी इंश्योरेंस क्लेम पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में ईडीएआर, वाहन सारथी और इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति तरमन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने का अनुमान है। केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्चार के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन स्मिथ ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्र के प्रति डाक की समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 787 अंक बढ़कर 72,381 पर, जबकि निफ्टी 254 अंक की बढ़त के साथ 22,486 पर था। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंध्रे कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिक्काल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of the Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. The two-day event, which began yesterday, is witnessing the participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. It is the second in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities, and accelerate outcomes through closer centre-state collaboration. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today embarked on an official visit to Singapore. During the three-day visit, the finance minister will hold a series of high-level engagements with the leadership of Singapore, senior members of the business and investment community, and global institutional investors. During the visit, Ms. Sitharaman will call on President of Singapore Tharman Shanmugaratnam and Prime Minister of Singapore Lawrence Wong. She will also meet Deputy Prime Minister of Singapore Gan Kim Yong and Foreign Minister of Singapore Dr. Vivian Balakrishnan. Discussions will cover key areas of the India-Singapore Comprehensive Strategic Partnership and take forward the outcomes of the International Society for Molecular Recognition, including cooperation in trade and investment, digital financial connectivity, capital markets, taxation, semiconductors, advanced manufacturing, skilling and aviation. Counting of votes for the Thattanchavadi Assembly constituency by-election in Puducherry has been completed. All India NR Congress candidate Ashok Anand has secured a comfortable victory with a margin of 8,482 votes in the seat vacated by Puducherry Chief Minister N. Rangasamy. Ashok Anand secured 13,358 votes.

0: FM Rainbow 101.9, musically yours.
1: ऑल राइट दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में. यादों का जो सफर है वो शुरू होता है हैदराबाद में, और मैं हूं आपका रेडियो मैन जो यादों की बारात लेकर आया हूं. आज हम याद करते हैं उस्ताद अमजद अली खान को, जो कि सरोद माइस्ट्रो है, और उन्होंने हमें ऐसी रागों से परिचय करवाया जो कि हमारी रूह से मुलाकात हो जाती है. अमीर खुसरो द सूफी सेंट एंड पोएट म्यूजिशियन हूज वर्सेस लाइक छाप तिलक स्टिल इकोज. और आज जो ख़ास दिन है वो ये भी है कि गोपा बंधु दास जो फ्रीडम फाइटर है वो उड़ीसा के मशहूर पोएट भी रहे हैं, उनका भी आज इम्पॉर्टेंट डे है. तो आज उनकी एनिवर्सरी है, उनको हम याद कर रहे हैं. सो यादों की बारात दरअसल एक ऐसा शो है जो 12:10 से 1 तक आपको रेट्रो म्यूजिक में ना सिर्फ गाने बट के हिस्ट्री बिहाइंड द सॉन्ग्स एंड ऑल्सो दिस आर इज अबाउट गोल्डन सुर, टाइमलेस वॉइसेस एंड मेमोरीज दैट नेवर फेड, है ना. तो आज इत्तेफाक से ये भी

All right, so you're listening to this very amazing number coming from a film that is not so popularly known, but it actually conveys a lot of matter. है ना कमाल की बात, यही खूबसूरती है हिंदुस्तानी फिल्मों की. अगर आप देखेंगे कि दिस मेडले इज़ अ फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ बॉलीवुड कंपोजर्स लाइक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ब्रॉट द सेंचुरीज ओल्ड सूफी पोएट्री इनटू सिनेमैटिक मेनस्ट्रीम, ब्लेंडिंग इट विद फिल्म सेंसिबिलिटीज एंड सो ऑन. अमीर खुसरोस छाप तिलक सब छीनरी, 14वीं सदी के बल्कि मैं कहूँगा कि सूफी कलाम को उन्होंने हिंदवी शक्ल दी है. एंड दैट इज द मिस्टिकल यूनियन विद द डिवाइन एंड इट लाइंस आर लाइक छाप तिलक सब छीनी रे मुसे नैना मिलाई के. डिस्क्राइब्स हाउ अ सिंगल ग्लांस फ्रॉम द बिलवर्ड स्ट्रिप्स अवे द वर्ल्डली आइडेंटिटी लिविंग ओनली स्पिरिचुअल लव. है ना कमाल की बात. जी हाँ, तो ऐसे ही कुछ नगमे हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे शो में जिसका नाम है यादों की बारात. आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है. यादों की बारात का मकसद जो है वो बहुत ही दिलचस्प और शानदार है. हिंदुस्तान में जितनी रेट्रो म्यूज़िक होती है उनको कहीं ना कहीं से टटोल कर चुन कर मुंतखब कर आप तक पहुँचाना मुझे

0: ऑलराइट, तो हमने भी मान लिया है कि इतनी दिलकश और खूबसूरत आवाज़ सिर्फ और सिर्फ किसी और की नहीं, आशा भोंसले की हो सकती है। दैट वॉज दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। उमराव जान 1981 की जो फिल्म थी, दिस सॉन्ग इज़ वन ऑफ द क्राउन ज्वेल्स ऑफ इंडियन म्यूजिकल हेरिटेज, कंपोज बाय नन अदर दैन खयाम, और जिसे खूबसूरती से कलमबंद किया शहरयार ने, एंड दे हैव इमोर्टलाइज दिस एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सॉन्ग। एंड आशा भोसले's गोल्डन वेलवेटी वॉइस, इट वॉज परफेक्टली कैप्चर द एसेंस ऑफ उमराव जान, अ कोर्टिसांस वर्ल्ड ऑफ पोएट्री, ग्रेस एंड रीस्ट्रेन पैशन, है ना। इतनी दिलचस्प और इतनी कमाल के जो बोल हैं वो शायद ही कोई लिख सकता है। इट्स एब्सोल्युटली ट्रूली अ मार्वलस जीनियस। तो दिस इज़ योर रेडियो मैन ऑन FM रेनबो 101.9, एंड इट्स टाइम फॉर मी टू ब्रेक द साइलेंस एंड गिव यू द सरप्राइज। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अल्प विराम, विल टेक अ क्विक ब्रेक एंड पोस्ट दैट विल हैव एन इंटरेस्टिंग पर्सन इन द स्टूडियो एंड वी विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस दैट टू यू। यादों की बारात का सिलसिला जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइए।
1: ఎల్ఐసి వారి బీమా ప్లాటినం లిమిటెడ్ ప్రీమియం ఆప్షన్ తో 7, 10, 12, 15 ఇంకా 18 సంవత్సరాల పాటు ప్రీమియం చెల్లించే సదుపాయం, మీ భవిష్యత్తుకు తగిన ప్రతిఫలం అందిస్తూ బీమా రక్షణ గ్యారంటీడ్ అడిషన్ తో ఇంకా మరెన్నో ప్రయోజనాలు ఎల్ఐసి బీమా ప్లాటినం తో. ఎల్ఐసి, ప్రతి క్షణం మీకు తోడుగా.
2: హే, వెరీ హంగ్రీ, వాట్ స్పెషల్ టుడే?
3: బిర్యానీ, కబాబ్స్, హలీమ్. బట్ వెయిట్, దిస్ మోర్.
2: మోర్ దన్ ఫుడ్, ఇట్స్ ద స్టోరీస్ బిహైండ్ ద రెసిపీస్. The history of the kitchens and the flavors that shaped our city.
4: And where do we taste all these?
3: On Jashne Hyderabad, every afternoon at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.
2: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani, it's a feast for your ears.
5: Jashne Hyderabad, savor the city's soul.
0: ऑल राइट दोस्तों, तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और हमारे साथ आज जो मेहमान हैं वो बहुत ही दिलकश और इतनी खूबसूरत अंदाज से वो तस्वीरें खींचते हैं और बड़े ही नाज़ो अंदाज के साथ वो लिखते भी हैं। वो शायर भी हैं, साथ ही साथ राइटर है, आर्टिस्ट है, और मैं कितने उनके लेबल्स और नाम के नाम। सो आई एम रेफरिंग टू नन अदर दैन सी एस अनिल राव गारू, हु हैज कम ऑल द वे एंड नाउ दैट living and shuffling, I would say, between Hyderabad City and also New York, a legendary photographer, writer, comic book creator, and his journey from electrical engineering to creative writing, and now 3D comic art proves that passion can reinvent life. There's not much drizzle outside, but his presence has brought some warmth. We are going to reflect this moments together. It's going to be a tete-a-tete and also very, very heartfelt, candid conversation.

All right, दोस्तों आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है हमारे शो में जिसका नाम है दिल रुबानी, जो दिल से निकलती है वो आवाज़ नहीं बल्कि जज्बा होती है। और इसी जज्बे को जिंदा रखने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है एक ऐसे कलाकार को जिन्होंने अपनी कला से दुनिया में लोहा मनवाया। मैं असल में बात कर रहा हूँ हमारे खास मेहमान सी एस राव साहब की, हु हैज बीन एबल टू क्रिएट अ निश इन दिस ह्यूज यू नो कैलाइडोस्कोपिक वर्ल्ड, एंड ही हैज बीन अ पोएट, अ राइटर, अ फोटोग्राफर एंड ऑल्सो द आर्टिस्ट। सो अमोंग दीज फोर कैप्स और द हैट्स दैट यू वेयर, विच वन इज क्लोजर टू यू, और दे आर ऑल यू नो जक्सटपोज।

0: రెయిన్బో 101.9.
1: ये आकाशवाणी हैदराबाद है. स्टूडियोज की घड़ी में 9:30 और 20 सेकेंड्स हुआ चाहते हैं. अभी आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम नए रंग.

हमें तोलने लगता है। हम किसी को देखते हैं और सोचते हैं, उसके पास मुझसे ज्यादा क्यों है, वो मुझसे ज्यादा कामयाब क्यों है, इसे वो मौका क्यों मिला जो मुझे नहीं मिला। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी ही जिंदगी से नाखुश होने लगते हैं। सवाल ये है कि दूसरों से मवाजना क्यों? क्या वाकई किसी दूसरे इंसान की जिंदगी हमारी जिंदगी का पैमाना हो सकती है? जरा एक बाग का तसव्वुर कीजिए। इस बाग में गुलाब भी हैं, चमेली भी, सूरजमुखी भी और छोटे छोटे फूल भी। क्या हम ये कहेंगे कि सिर्फ गुलाब ही खूबसूरत है और बाकी फूल बेकार हैं? हरगिज नहीं। हर फूल की अपनी खूबसूरती है, अपनी खुशबू है और खिलने का अपना वक्त है। इंसान भी कुछ ऐसा ही है। हर शख्स की सलाहियत अलग है, हालात अलग हैं और जिंदगी का सफर भी अलग है। हम अपनी जिंदगी का मुवाजना किसी दूसरे शख्स से क्यों करें? आज के दौर में ये मसला और भी बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर हम दूसरों की जिंदगी का सिर्फ खूबसूरत हिस्सा देखते हैं। किसी की नई गाड़ी, किसी का नया घर, किसी का बैरून मुल्क सफर, किसी की कामयाबी, और हमें लगता है कि सब लोग खुश हैं, सिर्फ हम पीछे रह गए हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक तस्वीर पूरी जिंदगी नहीं होती। हमें ये नहीं मालूम कि इस मुस्कुराहट के पीछे कितनी परेशानियां हैं, इस कामयाबी के पीछे कितनी नाकामियां हैं और इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे कितनी मेहनत छुपी हुई है। इसलिए किसी की जिंदगी के चंद खूबसूरत लम्हों का मवाजना अपनी पूरी जिंदगी से करना खुद अपने साथ नाइंसाफी है। मवाजने का एक बड़ा नुकसान ये भी है कि ये हमारी मौजूदा खुशियों को छीन लेता है। फर्ज कीजिए आपके पास एक अच्छी नौकरी है और आप मुतमईन हैं। फिर आपको मालूम होता है कि आपके दोस्त की तनख्वाह आपसे ज्यादा है। अचानक आपको अपनी नौकरी कम अच्छी लगने लगती है। आपके पास अच्छा घर है लेकिन किसी दूसरे का घर बड़ा है। आपके पास अच्छी गाड़ी है लेकिन किसी दूसरे के पास उससे महंगी गाड़ी है। यूं हमारी नजर उन नेमतों पर नहीं रहती जो हमारे पास हैं, बल्कि उन चीजों पर चली जाती है जो हमारे पास नहीं है। और इंसान के पास बहुत कुछ होते हुए भी वो खुद को महरूम समझने लगता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमें तरक्की की ख्वाहिश छोड़ देनी चाहिए। बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश अच्छी बात है, किसी कामयाब इंसान से मुतासिर होना भी अच्छी बात है। फर्क सिर्फ इतना है, किसी की कामयाबी हमें आगे बढ़ने की तहरीक दे, हमें अंदर से तोड़ने का सबब न बने। अगर हम किसी को कामयाब देखकर कहें, अगर वो मेहनत से आगे बढ़ सकता है तो मैं भी कोशिश करूंगा, तो ये मुस्बित सोच है। लेकिन अगर हम ये सोचें, वो मुझसे बेहतर है, मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, तो यही मवाजना नुकसानदेह बन जाता है। इसलिए दूसरों से नहीं, अपने कल से मवाजना कीजिए। कल मैं कहाँ था, आज कहाँ हूँ? कल मुझे क्या नहीं आता था, आज मैं क्या सीख चुका हूँ? कल मैं जिस काम से डरता था, क्या आज उसे करने की हिम्मत रखता हूँ? ये मवाजिना हमें आगे ले जाता है। जिंदगी में असल मुकाबला दूसरों से नहीं, अपने आप से होना चाहिए। अपनी कमजोरियों से, अपनी बुरी आदतों से, अपने खौफ से और अपनी गुज़िश्ता गलतियों से। याद रखिए, हर इंसान की कामयाबी का वक्त अलग होता है। किसी को 20 साल की उम्र में मौका मिलता है तो किसी को 40 में और किसी को 50 के बाद। देर से मिलने वाली कामयाबी नाकामी नहीं होती। और आपकी जिंदगी में अभी वो कामयाबी नहीं आई जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, तो सिर्फ इस वजह से खुद को नाकाम न समझे कि कोई आपसे पहले वहां पहुंच गया। हो सकता है आपका रास्ता मुख्तलिफ हो सकता है आपका वक्त अभी आना बाकी हो। और सबसे अहम बात, अपनी कदर दूसरों की कामयाबी से तय न करें। आपकी कदर उस बात से नहीं कि कोई आपसे आगे है या पीछे। आपकी असल कदर आपके किरदार, आपकी मेहनत, आपके रवैये और उन लोगों की जिंदगी में आपकी अहमियत से है जिनके लिए आप कीमती हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी को कामयाब देखें तो ये ना सोचें कि वो मुझसे बेहतर है, बल्कि सोचें उसकी कामयाबी अपनी जगह, अब मुझे अपनी जिंदगी में क्या बेहतर करना है। किसी की खुशी देखकर अपनी खुशी कम ना कीजिए, किसी की कामयाबी देखकर अपनी मेहनत को बेमाना ना समझें और किसी के सफर को देखकर अपने सफर से मायूस ना हों। क्योंकि जिंदगी कोई ऐसी दौड़ नहीं जिसमें सबको एक ही वक्त में मंजिल तक पहुंचना है। ये एक सफर है और हर मुसाफिर का रास्ता अलग है। किसी की मंजिल जल्द आती है, किसी की देर से। असल बात यह है कि इंसान अपने रास्ते पर चलते हुए अपनी खुशी, अपना सुकून और अपनी पहचान न खोए। तो आज से एक छोटा सा

अहद कीजिए, दूसरों से कम, अपने आप से ज्यादा मुवाजना करेंगे, कल से बेहतर आज बनने की कोशिश करेंगे, किसी की कामयाबी से हसद नहीं हौसला लेंगे, और अपनी जिंदगी में मौजूद नेमतों को दूसरों की जिंदगी देखकर कम नहीं समझेंगे, क्योंकि दूसरों की जिंदगी देखते देखते अगर हम अपनी जिंदगी जीना भूल जाएं तो इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा। आपका सफर आपका है, आपकी कहानी आपकी है, आपका वक्त आपका है, और आपकी जिंदगी किसी दूसरे की जिंदगी की नकल नहीं, इसे अपनी खूबसूरत कहानी बनाइए।

0: या ब्रश करके छोड़ देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं।
1: जी
0: यहां तक कैविटी एनामिल में रहती है तो दर्द नहीं, सिर्फ फूड इंपैक्शन होता है, खाने वाली अशिया फंसने का नाम है।
1: जी
0: लेकिन जब कैविटी ऊपर के एनामिल से डेंटिन में अंदर तक पहुंचती है तो तब दर्द में सबसे पहले सुनसुनाहट से शुरू होता है,
1: अच्छा
0: सेंसिटिविटी टू द कोल्ड, हॉट एंड स्वीट्स,
1: ओके
0: मीठी चीजें, ठंडी चीजें या गर्म चीजों से सुनसुनाहट होने लगती है।
1: जी
0: लेकिन अगर यहां पर भी इलाज करा लिया जाए तो सिर्फ फीलिंग से काम चल जाता है,
1: जी
0: लेकिन ये कैविटी वहां से निकलकर जब रग में पहुंचती
1: जी
0: है
1: जी जी
0: तो शिद्दत का दर्द होने लगता है।
1: जी जी
0: तो शिद्दत का दर्द जब नाकाबिले बर्दाश्त होता है तो मरीज परेशान होता है, लेटने लौटने लगता है, दवाई की तलाश में जाता है, दांतों के डॉक्टर से रुजू होकर दांत निकाल देने के लिए कहता है। लेकिन तब जब इंफेक्शन रग तक पहुंचता है तो रूट केनाल ट्रीटमेंट नाम का एक प्रोसीजर होता है, आरसीटी जिसको कहते
1: तो
0: हैं।
1: रूट केनाल पे भी हमारे सामीन को जरा बताएं, तफसीली रोशनी
0: जी
1: डालिए
0: जी
1: प्लीज आप।
0: जी रूट केनाल का मतलब क्या होता है, चूंकि ये कैविटी रग तक पहुंचती है
1: जी
0: तो वहां अगर थोड़ी सी चीज, जो रग होती है बहुत सेंसिटिव होती है, दांतों की रग बहुत सेंसिटिव होती है,
1: जी
0: नर्व एंडिंग्स बहुत हसास होते हैं,
1: जी जी
0: तो वहां अनस्थीसिया दिया जाकर अंदर से रग और ब्लड वेसल्स को निकाल देते हैं। निकाल कर जैसे ही ये रग को निकाला जाता है मरीज को इमीडिएट रिलीफ हो जाता है,
1: अच्छा,
0: जड़ के
1: अरे
0: अंदर जब
1: जी
0: इन्फेक्शन रग निकाला जाता
1: तो
0: है,
1: रिलीफ
0: ब्लड
1: मिल
0: वेसल्स
1: जाता।
0: निकाला, फौरी रिलीफ हो जाता है। तो वो रिलीफ वाले एरिया को फिर से मसनवी रग लगा कर दोबारा उसको बंद कर देते हैं,
1: यानी इन्फेक्शन को खत्म कर दिया जाता है।
0: अंदर से रग जो मुतासिर हुई है उसे निकाला जाता है, यानी
1: जी
0: दांत को नॉन वाइटल बना दिया
1: जी
0: जाता
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: मुर्दा बना दिया
1: जी
0: जाता
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: रग की सप्लाई, ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं
1: जी
0: होती,
1: जी
0: लेकिन मजबूती बरकरार रहती है।
1: जी
0: फिर से उसमें मसनवी रग, जीपी पॉइंट्स वगैरह लगाकर बंद कर देते हैं तो कुदरती दांत दोबारा महफूज हो जाता है। इस
1: अच्छा
0: प्रोसीजर को, जो अंदर से रग निकालना, क्लीन करना और उसको डीब्राइड बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन करना, इलाके को बढ़ाना और अंदर दूसरी मसनवी रग भरने का नाम रूट कैनाल ट्रीटमेंट
1: अच्छा
0: है।
1: डॉक्टर साहब, किन हालात में रूट कनाल की जरूरत पड़ती है?
0: जब शिद्दत की तकलीफ होती है,
1: अच्छा
0: जब
1: तो
0: इन्फेक्शन जड़ तक पहुंचता है,
1: जी
0: जहां रगे होती है वहां पहुंचता है, तो रूट कैनाल मैंडेटरी हो जाता है।
1: अच्छा एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है मेरा, क्या रूट कनाल से दांत कमजोर हो जाते हैं? रूट कनाल के बाद क्राउन लगाना जरूरी हो सकता है ऐसा कुछ?
0: हाँ, रूट केनाल के बाद चूंकि रग भरी जाती है, मसनवी रग, दोबारा निकलने का डर रहता है, खाने पीने वाली अशिया फिर दोबारा उसमें फंसने का खौफ रहता है और दोबारा इन्फेक्शन आने का डर रहता है, इसीलिए रूट केनाल को महफूज करने के लिए उस पर टोपी, ताज की तरह टोपी पहना
1: जी
0: दी
1: जी
0: जाती
1: दांत को कवर किया
0: है,
1: जाता
0: कवर
1: है।
0: कर दिया
1: जी
0: जाता
1: जी जी
0: है,
1: जी
0: क्राउनिंग कहते हैं
1: क्राउनिंग
0: उसको।
1: कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग रूट कनाल के नाम से ही जो है, रूट कनाल के नाम से ही डर जाते हैं। क्या रूट कनाल वाकई बहुत तकलीफदेह इलाज है?
0: अगर इन्फेक्शन है तो यूजुअली तकलीफ दे जरूर होता है, लेकिन चंद मिनटों का दर्द, बल्कि सेकंड्स का दर्द होता है। एनेस्थीसिया देकर रूट केनाल ट्रीटमेंट को भी पेनलेस बनाया जा सकता है।
1: अच्छा
0: अंदर एनेस्थीसिया देकर रग जब निकालते हैं तो
1: जी
0: रग निकालने में कोई किस्म की तकलीफ नहीं होती।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये दांत निकालने और रूट किनाल में बुनियादी फर्क क्या है?
0: दांत निकालने की तो हमें सख्त मुखालिफत करना चाहिए,
1: जी
0: डेंटिस्ट्री
1: जी
0: इतनी डेवलप होने के बाद दांत निकालने के बारे में सोचना ही नहीं है, हत्ता के दांतों की जड़ें भी अगर मजबूत हैं
1: जी
0: उसको रूट केनाल कोपिंग करके क्राउनिंग किया जाता है। दांत निकालना बहुत आसान है लेकिन निकालने से बहुत ज्यादा नुकसान है। सबसे
1: अच्छा
0: पहला नुकसान क्या है, जब दांत निकाला जाता है तो दांत की अत्रेव की हड्डी,
1: जी
0: एल्वोलर बोन होती है, वो गलती है,
1: जी
0: चेहरे पर ठस्से पड़ते हैं, उम्र से पहले ज्यादा उम्र नजर आती है, तो इसलिए कुदरती दांत को बचाकर उसे रूट केनाल करके क्राउनिंग कराने में, एक तो कुदरती दांत बच जाता
1: जी
0: है,
1: जी
0: चेहरे की रौनक,
1: अच्छा,
0: जमाल बरकरार रहता है।
1: तो मतलब ये है कि कुछ लोग, आप हमने भी सुना है लोग, डॉक्टर, अरे डॉक्टर ने कहा कि मतलब दांत निकलवा दो आराम मिल जाएंगे, ये सब जो मशवरे रहते हैं कुछ कुछ, उसके उसकी आप मुखालफत करते हैं, मतलब ये
0: जी,
1: बिल्कुल भी
0: चूंकि
1: नहीं होना चाहिए।
0: डेंटिस्ट्री अब डेवलप्ड है,
1: जी
0: इसको
1: जी
0: रूट केनाल, पल्पेक्टमी, पल्पोटमी के जरिए से बचा लिया जा सकता है।
1: और ये जो मसूड़ों की बीमारी है डॉक्टर साहब, वो दांतों को किस तरह से

0: सहायता सिर करती है।
1: मसोड़े की बीमारी, दांत की सहायता का मतलब मुंह की सहायता है, मुंह
0: जी
1: की सहायता का मतलब दांत एक हार्ड टिश्यू है,
0: जी
1: मसोड़ा सॉफ्ट टिश्यू है, तो ये दोनों की हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू की बरकरारी का नाम ही दांतों की बचत है। अगर मसोड़े भी खराब होते हैं तो दांत को नुकसान होता है,
0: जी
1: दांत भी खराब होते हैं तो मसोड़े
0: मसूड़ों
1: को
0: को नुकसान
1: नुकसान
0: होता
1: होता
0: है।
1: है।
0: अच्छा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऐसा
1: जी
0: समझिए।
1: जी
0: जी
1: मसोड़े एक मर्तबा रिजॉल्व हो जाते हैं,
0: जी
1: गल जाते हैं, घिस जाते हैं, तो दोबारा फॉर्म नहीं होते। जिस तरह जिस्म का अगर कोई आजा, हमको एक्सीडेंट से उंगली कट गई
0: जी
1: या हाथ कट गया, तो सूचर करने के बाद दोबारा वहां टिश्यू फॉर्म हो जाता है, फिर से उसमें सहायता आती है। लेकिन मसोड़ा वंस
0: जी
1: लॉस्ट इज लॉस्ट,
0: ओके
1: फिर
0: ओके राम
1: फॉर्मेशन नहीं
0: जी जी
1: होता।
0: तो मतलब सामीन लो, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दांत और मसूड़े हमारी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि दांतों को दिन में कितनी मर्तबा ब्रश करना चाहिए और सही तरीके से ब्रश करने का क्या तरीका है?
1: जी एक मारूफ कौल है, ब्रश ट्वाइस ए डे कीप डेंटिस्ट अवे।
0: अच्छा, एप्पल वाला तो सुना था।
1: नहीं, दो मरतबा ब्रश कीजिए, दांतों के डॉक्टर से दूर रहिए। सुबह
0: अच्छा
1: नाश्ते से पहले,
0: जी
1: रात में खाने के बाद। अक्सर जो ज्यादा डैमेज होता है रात में ही बिना ब्रश के सोने से होता है।
0: अच्छा, ये ब्रश के इंतखाब में भी हमें थोड़ा सा वो कुछ देखना है क्या? सख्त ब्रश दांतों के लिए ज्यादा फायदेमंद है या नरम, क्या होना? आमतौर पर लोगों को जरा सामीन के लिए आप बताएं, क्या मशवरा देना चाहेंगे
1: जी
0: आप?
1: जी पेस्ट ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल ब्रश का होता है।
0: अच्छा
1: हाँ, पेस्ट
0: हाँ
1: तो सिर्फ फ्रॉथिंग करता
0: जी
1: है,
0: जी
1: दांत को आगे पीछे
0: जी जी
1: मूवमेंट
0: जी
1: देता है,
0: जी
1: लेकिन ब्रश जो होता है हर
0: जी
1: एक के लिए एक किस्म का नहीं।
0: जी
1: यूजुअली मीडियम ब्रश बहुत सारे लोगों के लिए मुफीद होता है, लेकिन बाज लोगों के दांत ऐसे होते हैं जो सख्त होते हैं,
0: जी
1: जिसमें फ्लोरोसिस होता है, बिरूनी हिस्से को सफाई करने के लिए हार्ड ब्रश इस्तेमाल होता है,
0: अच्छा
1: और बाज लोगों के दांत डीमिनरलाइजेशन होता है, पैदाइशी एनामिल वीक होता है, तो ऐसे लोगों के लिए सॉफ्ट ब्रश एडवाइजेबल है। ब्रश हर एक के लिए एक किस्म का नहीं होता। दांतों का डॉक्टर दांतों की मॉर्फोलॉजी देखकर मीडियम या एक्स्ट्रा सॉफ्ट या हार्ड ब्रश तजवीज करता है, उसे इस्तेमाल करना है। और दूसरी अहम चीज,
0: जी
1: दांत के ब्रिजिल्स
0: जी
1: जो काड़ियां होती
0: जी
1: हैं
0: जी
1: वो
0: जी
1: टेढ़े बिंगी होती हैं, लेकिन मुसलसिल ब्रश किया जाता है ऐसे नहीं, उसकी भी एक मुद्दत होती है।
0: जी
1: दांत का ब्रश जब शेपलेस हो जाता है तो बदल लेना बहुत जरूरी
0: कितने
1: होता
0: दिन
1: है।
0: में तब्दील करना चाहिए एक ब्रश को?
1: बिलउमूम 6 से 8 हफ्ते में ब्रश बदल लेना
0: बदल लेना चाहिए।
1: बेहतर
0: जी जी
1: रहता है।
0: हाँ। डॉक्टर साहब, ये चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और ज़्यादा मीठा खाने से दांतों पे क्या असर पड़ता है?
1: एक्सट्रीम जब लेते हैं तो ज्यादा असर तो बहुत कम ही होता है, लेकिन
0: जी
1: एक्सट्रीम यानी एकदम ठंडा ले लिया, फिर
0: जी
1: उसके बाद एकदम गर्म ले लिया, तो ऐसे एक्सट्रीम्स को देने में बीच में लैकुना वक्त जरूरी है। आइसक्रीम खाते ही चाय पी लिया, चाय पीते ही
0: अच्छा
1: आइसक्रीम ले
0: ओके।
1: लिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: अच्छा, ये दांतों का जो बाकायदा चेकअप है वो कितने अरसे बाद करवाना चाहिए, या कोई दर्द हो तब जाना चाहिए, या बीच में कभी कभी यूं ही जाना चाहिए वैसा
1: नहीं
0: कुछ?
1: नहीं दांतों के डॉक्टर्स को साल में दो मर्तबा मिलकर अपना ओरल कैविटी का चेकअप करवा लेना बहुत जरूरी है। इससे मुंह के कैंसर जो आजकल कॉमन है, वो उसके लिए भी 6 महीने में एक मर्तबा दांतों के डॉक्टर से रुजू होकर ओरल चेकअप करा लेना बहुत दानिशमंदी होती है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बच्चों के दांतों का मुआयना किस उम्र से शुरू कर देना चाहिए क्या? मतलब देखभाल बच्चों के दांतों का कुछ खास उम्र क्या?
1: 24 महीने में बच्चे के अक्सर दांत इरप्ट हो जाते हैं,
0: ओके, पूरे
1: तो ढाई
0: तौर
1: साल
0: पर
1: से।
0: निकल आते हैं।
1: हाँ,
0: जी
1: प्राइमरी टीथ,
0: जी
1: दूध के
0: जी
1: दांत जो
0: जी जी
1: कहलाते
0: जी जी
1: हैं,
0: जी
1: वो प्राइमरी टीथ 24 महीने में। तो उसके बाद अगर दांत में कुछ फूड इंपैक्शन हो रहा है या काले धब्बे नजर आ रहे हैं
0: जी
1: तो
0: जी
1: फौरी चेकअप करवा लेना बेहतर रहता
0: बेहतर
1: है।
0: रहेगा। डॉक्टर साहब, ये एक कॉमन सवाल रहता है, मतलब हमारे सामीन के जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि दांतों का पीलापन क्यों होता है? दांतों में जो पीले धब्बे उब्बे आते हैं वो क्यों आते हैं? खाने पीने की वजह से आते हैं या फिर ब्रश ना करने, या क्या रहता?
1: धब्बे दो किस्म के होते हैं, एक होता है इंटरनल स्टेन, दूसरा होता है एक्सटर्नल स्टेन। एक्सटर्नल स्टेन चाय, पान, छालिया, सुपारी, निर्मली, सौंफ वगैरह के इस्तेमाल से, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की वजह से, या चाय कॉफी की वजह से आते हैं। वो सफाई करने से वो धब्बे चले जाते हैं, जिसको
0: जी
1: एक्सटर्नल स्टेन्स कहते हैं। इंटरनल स्टेन्स जो होते हैं
0: जी
1: पैदाइश के दौरान जो पानी इस्तेमाल

0: हुआ है
1: जी
0: उसमें फ्लोरीन अगर ज्यादा हो
1: जी
0: या टेट्रासाइक्लिन स्टेन्स हो, ऐसे धब्बे जो इंटरनल होते हैं वो ब्रश
1: जी
0: से नहीं जाते, उससे डॉक्टर से मशवरा करके उसको फेसिंग कराना या स्माइल डिजाइनिंग कराना या उसके लिए जिरकोनिया के कैप्स लगाना, देखकर डॉक्टर माहिर आपको मशवरा दे सकता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, ये फ्लोसिंग क्या है और क्या हर शख्स के लिए फ्लोसिंग जरूरी है,
0: फ्लॉसिंग कहते
1: उसकी वजाहत
0: हैं,
1: कर दीजिए उस इस्तेलाह की।
0: जी, फ्लॉसिंग जब एक धागा होता है जो वैक्स्ड होता है, नॉन वैक्स्ड होता है, फ्लैट होता है, राउंडेड होता है, दांतों के बीच में अगर बारीक सी सांध है तो
1: जी
0: वहाँ ब्रश के ब्रिजल से सफाई नहीं होती, तो फ्लॉसिंग के जरिए से दांत के अंदर आगे पीछे करके फ्लॉसिंग की जाती है।
1: जी
0: फ्लॉसिंग एक एक्स्ट्रा एडिशनल ओरल हाइजीन मेंटेनिंग हैबिट है, लेकिन मैंडेटरी तो
1: नहीं है,
0: नहीं हो
1: मतलब ये जहां
0: सकती।
1: तक ब्रश ना पहुंचे वहां तक
0: जी जी
1: फ्लोसिंग, अंदर तक जाके सफाई
0: सफाई के
1: करने
0: दांतों
1: का
0: के
1: नाम जो
0: बीच
1: है।
0: में
1: जी जी
0: इंटरडेंटल स्पेस में
1: जी जी
0: फ्लॉसिंग
1: जी जी
0: होती
1: तो
0: है।
1: ये उसको फ्लोसिंग कहते हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, एक सवाल और ये भी था कि बच्चों के दूध के दांत अगर खराब हो जाएं तो क्या उनका इलाज जरूरी है, क्योंकि वो बाद में तो गिरने ही वाले होते हैं, आमतौर पर लोग ऐसा सोचते हैं।
0: नहीं, देखिए, जब तक के प्राइमरी टीथ हेल्दी रहते हैं, आने वाले दांत के लिए जगह बनाए रखते हैं।
1: जी
0: अगर ये प्राइमरी या दूध के दांत ही कीड़ खाने लगेंगे तो उसका इन्फेक्शन का
1: ओके
0: असर मसौड़े पे पहुंचता है, जब वक्त से पहले गिरता है तो आने वाले दांतों की एरप्शन में मुखाम को तब्दील कर देता है, दांत टेढ़े बिंगे
1: जी
0: आने के इम्कानात रहते हैं और
1: जी
0: दांत मुतासिर होकर
1: जी
0: परमानेंट दांत निकलने के पूरे इम्कानात रहते हैं। इसलिए प्राइमरी टीथ का भी सेहत देखना बेहद ज़रूरी है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आखिर में बस ये आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे सामीन को ये बताएं कि दांतों से मुताल्लिक अगर आप 5 अहम मशवरे देना चाहें तो उनको क्या देना चाहेंगे, कुछ मशवरे। 5 तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन आपके अपने लिहाज से बताइए कुछ मशवरे जिससे सामीन को फ़ायदा भी हो।
0: जी, सबसे पहले ब्रश ट्वाइस ए डे, सुबह
1: जी
0: में खाने से पहले, रात में खाने के बाद।
1: जी
0: दूसरा, हर 6 महीने में एक मर्तबा दांतों के डॉक्टर से रुजू होकर अपना ओरल चेकअप करवा ले। तीसरा, अगर दांतों में फंस रहा है, काढ़ी वगैरह करने से सांध और बढ़ जाती है, इसके
1: जी
0: बजाय फ्लॉस का इस्तेमाल करें। और चौथी अहम चीज़ जो देखी जाती है, मुंह से किसी को मुंह के दांतों में अभी कुछ खाने के पार्टिकल्स जर्रात फंसे रहते हैं
1: जी
0: तो माउथ वॉशेस जो होते हैं, जो नॉन अल्कोहलिक हो,
1: अच्छा, उसमें
0: जिसमें
1: अल्कोहलिक भी
0: अल्कोहल,
1: होते हैं।
0: हाँ,
1: जी
0: अल्कोहलिक लेने से मुंह में ड्राइनेस आ जाता है,
1: जी
0: ऐसे माउथ वॉशेस विच डजेंट हैव द अल्कोहल
1: जी
0: आप इस्तेमाल करते हुए चेहरे की साख्त और दांत की सेहत को बरकरार रख सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफियत भरी ज़िंदगी से कुछ मिनट हमारे लिए निकाले। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, अपने सामेईन की तरफ से भी आपका भरपूर और दिली खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: डॉक्टर माइक सिलसिले के तहत आप समाप्त कर रहे थे इंटरव्यू। हमारा आज का उन्वान था डेंटल केयर, यानी कि दांतों की निगहदाश्त। डॉक्टर सिराजुल हसन, जो कि माहरे दांत रह चुके हैं, डेंटिस्ट हैं, आपने हमें बेहद मुफीद मशवरों से नवाजा है। और हम उम्मीद करते हैं अपने सामाइन से कि आपने दांतों के मुताल्लिक बहुत सारी ज़रूरी बातें सुनी हैं और उन्हें अपनाने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि दांतों की हिफाजत हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। चलिए सामाइन, आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल हम जाते हैं एक छोटे से वक्फे पर। वक्फे के बाद ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।

बिल्कुल दोस्तों, धड़कते दिल के खूबसूरत तराने लिए हुए हम भी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्रोग्राम का पहला गीत आपने सुना, आपको पसंद ज़रूर आया होगा। तो मेहरबान कदरदान मेहमान, जाने जहां और किन किन अलकाब से हम आपको याद करें दोस्तों। बस हम कहना यही चाहते हैं कि जब भी हम आपसे हम कलाम होते हैं, यानी कि मिलते हैं, यानी कि ये रेडियो के ज़रिए हमारी जो मुलाकात होती है वो जैसे माहौल के हर शय में हरकत पैदा कर देती है, मानो हर चीज़ में जान सी पड़ जाती है। क्यों ना हो, हमारा और आपका ये साथ है ही इस कदर निराला। और इस कदर निराले अनोखे साथ को, वक्त को जैसे जिला मिल जाती है जब हमारी बातचीत किसी खास उनवान के तहत होती है। जी हाँ, हमारे प्रोग्राम का उसूल भी यही है कि हम हर रोज किसी न किसी खास उनवान के तहत, जो कि उस दिन की खूबी या खासियत को जाहिर करता हो, बात करते हैं या किसी थीम के तहत बात करते हैं और फिर उससे जुड़े गीत भी आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, आज के दिन की ये खास मुलाकात भी कुछ खसूसियात को वाजह करती है। जैसे कि आज का दिन यानी कि 9 अक्टूबर मखसूस है दो चीज़ों के लिए, दो खास वजूहात के बिना पर। पहला तो ये है कि आज का दिन टेरिटोरियल आर्मी डे यानी कि इलाकाई योम फौज के तौर पर मनाया जाता है, और दूसरा ये है कि आज का दिन वर्ल्ड पोस्ट डे यानी कि आलमी योम डाक के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों, इन खास दिनों का तذکرہ हम तफसील से ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, ज़रूर करेंगे। फिलहाल सुनते हैं ये खूबसूरत संगीत जो कि हमारे इन दोनों उन्वानात का एक साथ तذکرہ करता है। लीजिए सुनिए फिल्म बॉर्डर से लिया गया ये यादगार गीत।

दोस्तों, आपने सुना फिल्म बॉर्डर से लिया गया ये यादगार और दिल को छू लेने वाला गीत। बिल्कुल दोस्तों, ये गीत दो तरफा यानी हमारे आज के दोनों ट्रॉपिक्स के ऐन मुताबिक था। इस गीत में एक तरफ सरहद पार जान लुटाने वाले फौजियों की हसरतों का जिक्र है, तो दूसरी जानब संदेशों का, चिट्ठियों का आना जाना। वाकई क्या खूब केमिस्ट्री है ना। वैसे तो दोस्तों, खतूत संदेशों या पैगामात में हुई मुलाकातों का लुत्फ सरहद पार अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनों से जुदा होने वाले फौजी सिपाहियों से बेहतर और कौन जान सकता है। आइए इसी तनाजुर में एक और दिल को छू लेने वाला गीत सुनते हैं। सुनिए ये नगमा।

दोस्तों, ये खूबसूरत गीत अभी आपने सुना फिल्म केसरी से, और इस गीत को आवाज़ें दी हैं अरिजीत सिंह और असीस कौर ने। इसके लिरिक्स और म्यूजिक डायरेक्टर हैं तनिष्क बागची। वाकई में बहुत ही खूबसूरत ये गीत, इसके बोल ऐसा लग रहा था कि जैसे जो दिल के करीब होता है, जो दिल को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, वो कभी दिल से या अपने आप से दूर ना हो। वेल, दोस्तों चलिए, गीतों की बातें भी होंगी, गीत और भी होंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक की जानिब अपना रुख करते हैं। फिलहाल गीत सुरीले गाता जा प्रोग्राम में हमारी बात चल रही है टेरिटोरियल आर्मी डे के ताल्लुक से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इसके बारे में कि हिंदुस्तान में हर साल 9 अक्टूबर को ये दिन प्रादेशिक सेना दिवस या इलाकाई योम फौज के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन टेरिटोरियल आर्मी के ख़याम और मुल्क के लिए इसकी शहरी सिपाहियों की गिरां क़द्र खिदमात को खिराज तहसीन पेश करता है और पेश करने के लिए मनाया जाता है। इसका तारीखी या हिस्टोरिकल पस मंज़र ये है कि आज़ादी के बाद 18 अगस्त सन 1948 को भारतीय पार्लियामेंट में टेरिटोरियल आर्मी एक्ट पास किया गया और इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह या इनेकाद 9 अक्टूबर सन 1949 यानी कि 9 अक्टूबर 1949 को भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी ने किया था। इसी मुनासिबत से हर साल 9 अक्टूबर को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम सैल्यूट करते हैं, हम खिराज तहसीन पेश करते हैं हमारे भारत के उन जांबाज सिपाहियों को, आर्मी को, आर्मी की फ़ौज को, जो कि अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश की हिफाजत करते हैं। तो आइए हमारे फ़ौजी भाइयों के लिए या इसी टॉपिक से मुतालिक एक और खूबसूरत गीत आपकी नज़र करते हैं। लीजिए सुनिए।

दोस्तों, वक्त बड़ी तेज़ी के साथ रवा दवा है। स्टूडियोज़ की घड़ी में वक्त हो रहा है 10:33 और 33 सेकेंड्स। बहुत ही कम वक्त हमारे और आपके दरमियान बाकी है प्रोग्राम के अख्तिताम के लिए। तो चलिए, बातें तो बहुत सारी हैं, एक और ख़ास उन्वान के तहत हमें बातचीत करनी है। और वो ख़ास उन्वान ये है कि आज का दिन वर्ल्ड पोस्ट डे यानी कि आलमी योम डाक के तौर पर भी बहुत मशहूर है, मनाया जाता है। इस दिन की अहमियत कुछ इस तरह से है कि ये दिन 1874 ईस्वी में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU के क़याम की याद दिलाता है, जिसने दुनिया भर में ख़त व किताबत और मवासिलात का यानी कि लेटर्स का निज़ाम क़ायम किया। और इसका मकसद ये था कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या इसके साथ और भी इसके कई मकासद थे। डाक खाने सिर्फ खतूत पहुंचाने का ज़रिया नहीं, बल्कि ये दूर दराज इलाकों तक मालियाती खिदमात, बजट स्कीम्स और पब्लिक सर्विस फराहम करने का भी अहम काम अंजाम देते हैं। इसके ताल्लुक से कुछ और ज़रूरी बात हम आपसे ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल वक्त हुआ है एक खूबसूरत गीत का। दोस्तों, मैं यही बताना चाहती हूँ कि जिस तरह ज़िंदगी में हर काम की अहमियत है लाइफ में और इस दुनिया में, इसी तरह से इस वर्ल्ड में हर दिन को कोई ख़ास रंग, ख़ास नाम दिया गया है। जैसे कि पोस्टल सर्विस जो है, डाक की जो सहूलत होती है यानी कि चिट्ठियाँ पहुँचाने का जो निज़ाम होता है, वो भी एक खुसूसी माने रखता है हमारे देश में या हम इस दुनिया में, सारी दुनिया में। तो ये आलमी योम डाक दिन है, ज़रूरी है कि हम अपने दिल का हाल अपने अपनों तक पहुंचा सकें। और इसके लिए एक बहुत ही प्यारा, एक बहुत ही ख़ास ज़रिया जो बहुत ही पुराने वक्त से चलता आ रहा है, शुरुआत में जब चिट्ठियां लिखने का दौर शुरू हुआ था, ये बहुत पहले का दौर है। हम कह सकते हैं कि क़ब्ल मसीह में यानी कि बिफोर क्राइस्ट भी इसका, इस सिलसिले का, इस तरीक़े का कार शुरू हो चुका था, इस तरह का तरीक़ा। और आज भी कई सौ सालों के बाद भी, हज़ार सालों के बाद भी ये तरीक़ा राइज है और रंग बदलता हुआ है। तो हम अपने अपनों तक अपने दिल का हाल चिट्ठी पे लिखकर या मैसेज के ज़रिए या किसी भी संदेश के ज़रिए पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दिल की बात तो अलग अलग है और इसी तरह से भेजने के तरीक़े भी वक्त के साथ बदलते गए हैं। तो आइए एक गीत सुनते हैं कि ख़त में किस तरह से दिल का हाल लिखा जाता है और लिखा क्या जाता है। जब प्यार में आशिक एक दूसरे को ख़त लिखते हैं तो वो किस तरह से लिखते हैं, आइए ये गीत सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं।

दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी जी की खूबसूरत आवाज़ में ये गीत आपने अभी सुना। गीत तो मज़ेदार था ही, और ये दास्तां बयान कर रहा था ख़त की, कि ख़त जब महबूब को लिखा जाता है तो उसमें किस तरह के चेंजेस होते हैं, किस तरह की खूबियां होती हैं, किस तरह के रंग बदलता है, और कैसे कैसे क्या क्या होता है ख़त में। ये सारी बातें हमने इस सॉन्ग के ज़रिए या इस गीत के ज़रिए जानी। वाकई में बहुत ही खूबसूरत ये गीत था। दोस्तों, आज हमारी बातचीत का उन्वान भी कुछ यही है कि हम आज वर्ल्ड पोस्ट डे के मुतालिक बात कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको कुछ जानकारी दी थी इस हवाले से कि इसे सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ, और इसका और भी कई मकासद हैं इसके, और इसका एक और मकसद ये है कि फॉस्टरिंग ट्रस्ट, यानी कि एतमाद की बहाली। जैसे कि जदीद दौर में भी डाक का ये जो निज़ाम है, दूर दराज और पसमांदा यानी कि जो गरीब कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए एक काबिल भरोसा ये एक ज़रिया है, ये एक वास्ता है। जो कि देहातों में रहते हैं ऐसे अवाम जो कि गरीब हैं, पसमांदा तबक़ा से जिनका ताल्लुक़ है, उन तक भी डाक की सहूलतें पहुंचाई जाती हैं। तो आज के दौर में तो ये काफ़ी आसान तरीक़ा हो गया है, लेकिन जब पहले पहल जब इसकी शुरुआत की गई थी तब ये बहुत मुश्किल था कि शहरी इलाक़ों में और ख़ास तौर पर देही इलाक़ों में, देही एरियाज में खतूत का पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता था। और फिर डाकिया जब डाक लेकर आता था तो लोगों के दिलों और चेहरों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर जाती थी, और खुद बोलते थे कि डाकिया जी आप ही पढ़कर सुना दें हमारे संदेश में क्या है लिखा हुआ। कुछ इस तरह की बातें होती थी। बड़ा ही मज़ेदार वो वक्त था, और फिर वक्त बदलता रहा। कभी कभी बातें जो कि खतूत होते हैं, खतूत की बातें परिंदों के ज़रिए भी भेजी जाने लगी। प्यार मोहब्बत में अक्सर ऐसा वक्त हुआ करता था, और आज भी हुआ करता है शायद, क्योंकि हम 90s के फिल्मों में हमने इसकी झलकें देखी हैं। तो आइए लता मंगेशकर की जी की आवाज़ में फिल्म मैंने प्यार किया का ये मशहूर गीत हम सुनते हैं और

दोस्तों, मैंने प्यार किया फिल्म का ये सुपरहिट गीत हर दौर के लिए एक वाकई में सुपरहिट है, क्योंकि इसमें प्यार में पहले प्यार में जब चिट्ठी भेजी जाती है, भेजी गई है कबूतर के जरिए, तो ये ऐसा पब्लिक के ऊपर ये जो असर रहा इसका, चिट्ठी का, ये बहुत ही खतरनाक असर रहा और हमेशा के लिए ये गीत एवरग्रीन हो गया। और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद ज़रूर आया होगा। चिट्ठी भेजने के तरीके बदलते गए, कभी पंछी के जरिए, तो कभी दोस्त के जरिए, सहेली के जरिए, या चिट्ठी पोस्टल पोस्ट के जरिए भेजी गई, डाकिया ने चिट्ठी लाई, बहुत सारे तरीके हुए। और चिट्ठी जो आजकल यानी कि मौजूदा दौर में भेजी जा रही है, वो है इंटरनेट के जरिए भेजी जा रही है, मोबाइल फ़ोन के जरिए भेजी जा रही है। ये भी बहुत ही अनोखा और निराला निज़ाम है, जो कि आज बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर गया है। तो आइए इसकी एक और झलक दिल ही दिल में फिल्म के इस गीत के जरिए देखने की कोशिश करते हैं। सुनिए ये खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, इसी खूबसूरत गीत के साथ हमारा आज का ये प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा अब यहीं पर इख्तिताम पर पहुंचता है। हमारी अगली नशिस्त में कुछ और गीत लिए सजाए कुछ और उन्वानात के तहत आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। दोस्तों, प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा के बाद हमारे प्रोग्राम नैरंग की जो आखिरी पेशकश है वो है पयाम शब। तो आइए समाप्त करते हैं पयाम शब। तहरीर और पेशकश है जनाब जैदी की।

0: अब जुदाई के सफर को मेरे आसान करो, तुम मुझे ख्वाब में आकर न परेशान करो। हर ताल्लुक हमेशा साथ रहने के लिए नहीं होता, बाज़ औकात बिछड़ने को भी सब्र, विकार और हकीकत को कबूल करने के साथ तय करना पड़ता है। जुदाई के वक्त माजी के यादों में खुद को कैद करने के बजाय हकीकत को कबूल करना सीखें। जो शख्स जिंदगी से दूर हो जाए उसकी याद का एहतराम जरूर करें, मगर अपने सुकून और मुस्तकबिल को उस याद के हवाले न करें। बास सफर अकेले ही तय करने पड़ते हैं और सब्र ही इन सफरों को आसान बनाता है।
1: समय इस खूबसूरत संदेश के साथ, पयाम के साथ ही हमारी नरंग की ये बज्म अब इख्तिताम को पहुंचती है। अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब खैर।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियोज की घड़ी में रात के 11 बजने ही वाले हैं। अभी कुछ ही देर में हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार और न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे।

0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने भी दारापुर और मदुरांतकम में सीटें जीत ली हैं। पुद्दुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजयी रही। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। आज शाम विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि EVM का इस्तेमाल बंद किया जाए और चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने इस मामले में सबूत मांगे हैं और वे उन्हें सबूत सौंपेंगे। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि CJP ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा है कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायवेद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chowdhury and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर फिर से हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं आर्थिक विश्लेषक उदयन रे। उदयन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में अर्जुन।
0: Benchmark domestic indices rebound. Sensex jumps over 1%. Nifty settles above 22,500 mark. Asian stock markets and mixed and global crude oil prices decline.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज तेजी का रुख। सेंसेक्स में 1% से अधिक का उछाल और निफ्टी 22,500 अंक से ऊपर बंद हुआ। एशियाई शेयर बाजारों में मिला जुला रुख और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट।

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज जोरदार तेजी देखी गई। इसके साथ ही बाजार में लगातार दो कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 879 अंक यानी 1.23% की बढ़त के साथ 72,472 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 289 अंक यानी 1.3% चढ़कर 22,520 पर पहुंच गया। विस्तृत बाजार में भी आज तेजी का रुख देखने को मिला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप सूचकांक करीब 1.7% उछला जबकि स्मॉल कैप में 0.5% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस रीबाउंडेड टुडे स्नैपिंग अ टू डे लूजिंग स्ट्रीक। सेंसेक्स एडवांस 879 पॉइंट्स 1.23% टू क्लोज एट 72,472। Nifty gained 289 points, 1.3% to settle at 22,520. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose nearly 1.7% and the small-cap 100 index added over 0.5%.
1: सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 29 के शेयरों में तेजी रही। बढ़त दर्ज करने वाली प्रमुख कंपनियों में आईटीसी के शेयर 4.8% चढ़े। टीसीएस में 4.2% से अधिक की तेजी आई जबकि अडानी पोर्ट्स के शेयर 3.4% मजबूत हुए। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज एकमात्र ऐसी कंपनी रही जिसके शेयरों में 0.6% की गिरावट देखी गई।
0: ऑल 28 सेक्टोरल इंडस्ट्रीज ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एज्ड अपवर्ड। Among the top gainers, focused IT climbed nearly 3%, IT jumped 2.9% and hospitals gained 2.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,516 companies advanced, 1,867 companies declined and 227 companies

0: remain unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले आज 5 पैसे की मजबूती के साथ 96 रुपए 74 पैसे पर बंद हुआ. उद्यन, एक बार कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है.
2: धन्यवाद.

0: that they have raised, then they, that might just have been a challenge, but it's in a good place. And I mean, good place as in it's not going to get affected negatively. Obviously, everybody is looking at the festive season where they're hoping that the whole financial sector, NBFCs, banks and others, they will be able to facilitate those, the sales spike that typically
1: consumption
0: happens. Yes, absolutely.
2: Then, थोड़ा सा अगर स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें, मिला जुला रुख हमने पूरे सप्ताह में देखा, तो इसे ये कह सकते हैं कि जो छोटे निवेशक हैं उनका भरोसा लार्ज कैप की बजाय स्मॉल कैप मिड कैप पर ज्यादा हो रहा है क्योंकि वहां बिकवाली ज्यादा हो रही है?
0: नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता. वो देखिए, स्मॉल कैप मिड कैप में ना एक एक बात है कि वहां पे एक लिक्विडिटी इश्यू रहता है. तो आप देखेंगे कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो वहां पे मतलब बहुत बहुत सावधानी के साथ वहां पे ऑपरेट करते हैं. ये तो हमारे डीआईआईज हैं, हमारे स्वदेशी जो इंस्टीट्यूशन संस्थान है वो वहां पे जाके वहां पे उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है. पर यह भी सच है कि वहां पे जो कल के सुपरस्टार्स हैं वो वहां पे हैं. तो हाँ, तो वो जो शुभमन गिल आज से 5-6 साल पहले थे वो उस टाइप के स्टॉक्स हैं वहां पे. तो वो भी अपॉर्चुनिटी है वहां पे. वो होता है, जोखिम भी ज्यादा होता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता. मुझे लगता है कि ये एक इतना इतने दिन तक ऐसा एक माहौल बना रहा, तो आज जब हाई टाइड आया तो सब सारे बोट्स उठ गए. तो पर वहां पे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आ रही हैं, इन्वेस्टिंग स्टोरीज आ रही हैं, जिसके वजह से भी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आ रहा है. ऐसा नहीं है कि मतलब भेड़ चाल में सब कुछ चल रहा है, वहां पे काम अच्छा हो रहा है. पर स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में अगर कुछ सुपरस्टार बन जाते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो साइड में रह जाते हैं. तो वो दोनों टाइप के रिस्क होते हैं. तो वो आप अगर किसी के थ्रू जा रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स या एनपीएस या किसी और के थ्रू से आपका निवेश हो रहा है, स्लाइटली बेटर होता है क्योंकि वहां पर आपको एक्सपर्टीज का फायदा मिलता है.
2: तो क्या ये समय है लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने में, क्योंकि जिस तरह के मार्केट के हालात हम देख रहे हैं, चारों तरफ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं?
0: देखिए, अगर लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर रहे हैं तो एक तो ये है कि आप लार्ज कैप देखें, मिड कैप देखें, फिर मल्टी कैप, उस टाइप की बातें करें. मतलब या तो सीधे स्टॉक या फंड्स है. दूसरा है कि बिल्कुल आप इस पर सर खपाना नहीं चाहते हैं तो सीधे इंडेक्स फंड या ईटीएफ में डालें. और वाइड इंडेक्स होना चाहिए, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500 में देखिए. और इंडेक्स फंड्स तो अब और पॉपुलर होते चले जा रहे हैं. उसमें आप ये सोचिए कि भारतीय इक्विटी जो शेयर बाजार का एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसको एक स्टॉक की तरह समझिए. और एक मतलब एक यूनिट को, और कहिए कि ये भारत के शेयर बाजार को रिप्रेजेंट करता है और मैं इस यहां पे निवेश करना चाहता हूं. भारतीय जो कंपनियां हैं, कम से कम हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है प्लस इन्फ्लेशन जो है, उतना रिटर्न तो देगी. एक अच्छी कंपनी तो उतना देती ही है. और ये अगर मान के आप अगर चलते हैं कि आपको लगता है, गारंटी की कोई किसी बात की होती नहीं है, पर लंबी अवधि में यह पाया गया इतना तो हो ही जाता है. तो अगर आप इंडेक्स को एक स्टॉक की तरह माने, एक यूनिट को, म्यूचुअल फंड यूनिट, इंडेक्स फंड या ईटीएफ, जो कि निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 या 100 या 500 जो भी करते हैं, थोड़ा सा बड़ा ब्रॉड बेस, तो वो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे. तब आपको ये सब स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिक्स कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, उसके बारे में या अलग अलग जोड़ तोड़ करके देखिए. एक तो होता है कि जो फॉर अ लिविंग जो ये निवेश करते हैं, एक लो रोजमर्रा की जिंदगी लोग जी रहे हैं, उनको काम भी करना है, उनको परिवार के साथ समय भी बिताना है, तो उनके लिए ये वाला रूट शायद बेहतर है. बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी.
1: वेरी ब्रीफली, अपार्ट फ्रॉम आईटी, एफएमसीजी ऑल्सो डिड वेरी वेल टूडे. द इंडेक्स वेंट अप बाय 966 पॉइंट्स. अगेन, क्वार्टरली रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी गुड.
0: I would say there might just be a mixed bag. It may not be a wide-ranging thing, but I think the what people would be looking at, how these guys are looking at the festive season. So all eyes would be on the festive season.
2: एशियाई बाजारों में आज सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% गिर गया. जापान का निक्केई 225 मामूली रूप से नीचे है, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग 1.8% चढ़ा और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ. वहीं दक्षिण कोरिया का कोस्पी अवकाश के कारण बंद रहा. आज एशियाई बाजारों में भी एक तरह से ऐसा रुख हमें देखने को नहीं मिला जिससे ये पता चले कि जो पॉजिटिव खबरें आ रही थी अलग अलग देशों से, खासतौर पर यूएस की बात करते हैं, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला हो?
0: वो मुझे लगता है कि ऐसे अभी तो मैंने डिटेल में देखा नहीं है, मुझे लगता है वो वहां पे इंडिविजुअल केसेस में बातें रही होंगी, पर ये जो इफेक्ट है आज भी अगर आज उसको पूरी कंटिन्यूटी में आज अगर देखेंगे, मुझे लगता है शायद थोड़े से बेहतर पूरा जब हो जाएगा, थोड़ा सा स्लाइटली लॉन्गर पीरियड में लेंगे, एक दिन और ले लेंगे, शायद आपको वही ट्रेंड आपको वहां पे भी रुझान वहां दिखे, वही हो रहा है
2: जी। आगे बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने कहा है कि मौजूदा अलनीनो की स्थिति और तीव्र होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की भी संभावना है। इससे कई इलाकों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। 2026 में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचेगा। इस घटना से मौसम का पैटर्न प्रभावित होगा और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पारिस्थितिक तंत्रों पर इसका असर पड़ेगा। संगठन की महासचिव सेलेस्टे साउलो ने कहा है कि अल नीनो की स्थिति तेजी से मजबूत हो रही है और इसके फरवरी 2027 तक बने रहने की लगभग 100% संभावना है। और अब अगर भारत की बात करें तो RBI के गवर्नर के हवाले से यह बात कही जा रही है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सप्लाई चेन में बाधाओं का असर घरेलू आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। वहीं कमजोर दक्षिण पश्चिम मॉनसून और अल नीनो की स्थिति से आगामी रबी सीजन और ग्रामीण मांग प्रभावित हो सकती है। हालांकि गैर कृषि गतिविधियों के मजबूत बने रहने से ग्रामीण खपत को सहयोग मिलने की भी उम्मीद है। वहीं महंगाई के मोर्चे पर भी चुनौतियां बनी हुई हैं। कमजोर मॉनसून, अल नीनो और अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों से जो उतार चढ़ाव पर महंगाई पर जो दबाव बन रहा है वो आगे भी जारी रह सकता है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी, कोर महंगाई में बढ़ोतरी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की अधिकतर श्रेणियों में महंगाई का बढ़ना इस दबाव के व्यापक होने का संकेत दे रहा है। उद्यन, जिस तरह से RBI के गवर्नर ने ये तमाम चीजें कही हैं, क्या स्थिति नजर आती है खासतौर पर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हमारी अपनी नीड्स हैं उनको लेकर के?
0: देखिए, खाद्य पदार्थ फूड की जो मुद्रास्फीति है वो हमेशा एक एल नीनो के वेदर सिस्टम से उसके ऊपर असर पड़ता है। हमारे देश में फिर भी हम खाद्य भंडार रखते हैं, जो क्रॉप्स हैं उसमें हम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर।
2: रबी के लिए चिंता जताई गई
0: जी,
2: है।
0: बिल्कुल है। और अगर आपने कमेंट्री देखी होगी इंटरेस्ट रेट से जुड़ी हुई, इसीलिए लोगों का मानना है कि एक और इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी, एक और राउंड शायद साल के अंत में या अगले साल के बिल्कुल शुरुआत में एक और होगा। उसके बाद अगर जो खाड़ी क्षेत्र में जो संघर्ष है वो अगर बढ़ना जाए तो फिर उसके बाद एक ईजिंग होगी, नहीं तो अभी लोगों का मानना है, क्योंकि ये इस टाइप की चीजें हो रही हैं, कुछ और भी घटनाक्रम में उम्मीद की जा रही है, तो उनको मानना है कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, मुद्रास्फीति की जो दबाव है वो बरकरार रहेगी और उसको काउंटर करने के लिए RBI को शायद एक और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की एक और राउंड की जरूरत पड़ी।
2: IMD ने भी आंकड़े जारी किए हैं, उनके अनुसार ये कहा गया कि जुलाई से सितंबर के बीच में हमारा जो रेनफॉल है वो वर्ष 2001 के बाद से अपने मतलब सबसे न्यूनतम स्तर पर आ गया, इसका भी काफी असर पड़ रहा है।
0: बिल्कुल, ये और ये सबसे पहले जब भी वेदर सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, इस टाइप के सिचुएशन आती हैं, परिस्थितियां होती हैं, तो सबसे बड़ी चिंता होती है कि हमारे कृषि के ऊपर क्या असर पड़ेगा, खाद्य पदार्थ और खाद्य पदार्थ से जुड़े हुए जो दाम हैं उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और उस हिसाब से सरकार को अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्शंस हैं वो प्लान करने पड़ते हैं
2: जी।
1: In more news, GST Council yesterday announced a host of reforms aimed at improving compliance in the GST regime. Talking to Akashvani, Jyoti Vij, Director General of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, said GST Council's reforms announcement will facilitate the ease of doing business.
3: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डीक्रिमिनलाइजेशन की तरफ काफी इसमें पॉजिटिव मेजर्स लिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन में हमारे इंडस्ट्री की एक मांग थी कि ई कॉमर्स कंपनीज की जब स्टेट लेवल पे रजिस्ट्रेशन होती है तो वो स्टेट लेवल के एड्रेसेस मांगते हैं। ई कॉमर्स के हर जगह में अपने ऑफिसेज नहीं होते, तो हमारा रिकमेंडेशन था कि वेयर हाउसेज को लिया जाए, वो रिकमेंडेशन जो है वो मान लिया गया है। नोटिस जो जाएंगे वो एक थ्रेशोल्ड कर दी गई है 10,000 की, तो 90% उसी में कैप्चर हो जाते हैं, इसमें काफी नोटिसेस कम हो जाएंगे. ये काफी परेशानी थी इंडस्ट्री की. तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इजी कंप्लायंसेस, डीक्रिमिनलाइजेशन, इन सबसे इंडस्ट्री का फायदा होगा.
1: स्पीकिंग टू आकाशवाणी, डॉक्टर रंजीत मेहता, CEO and Secretary General of the PhD Chamber of Commerce and Industry, welcomed the GST Council recommendations.
4: The recommendation of the 57th GST Council meeting represent a significant step towards making India taxation system simpler, more transparent and business friendly. The recommendation to remove arrest provision under GST, increase the prosecution threshold from 1 crore to 5 crore, sends a strong message that genuine business should be encouraged, not burdened by excessive procedural complexities.
1: Will you brief comments on this because GST collection for the month of September was 2.04 lakh crore rupees. But again, those who are collecting don't want to be on the wrong side of the law. It's been decriminalized. The ease of doing business has gone up. How do you see the new reforms?
0: I think it can be quickly split into a couple of parts. One is the, Arjun, when you get into GST payments, your money gets stuck. So a lot of these provisions that they're talking about, it frees up the money. You can claim credit or money that's getting stuck, that's getting opened up. So for small business, that's a big deal. Second is compliance. Compliance is a big deal. You know, it takes up a lot of time. Are you going to do business or are you going to comply with GST? So you're making it easier. All these multiple registrations, things related to exports, e-commerce, as your soundbite mentioned, these are administrative things which were kind of anachronistic and troublesome. Adhering to them was a challenge. So that has been taken care of. So I would say these two, in terms of compliance, in terms of cumbersomeness, they have been fixed.
1: In more news, India Today stressed that the steps announced by the US regarding Permanent Labor Certification Program, PERM, do not advance the shared ambitions of both countries. Addressing the media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal emphasized that talent mobility adds value to both economies of India and the US. He also highlighted that while it creates opportunities for Indians, it equally benefits US companies by providing access to cutting-edge talent, innovation, research, productivity, competitiveness and job creation. The spokesperson further stated that besides creating shareholder wealth in the US, this is an area of tremendous mutual benefit for the two countries.
5: We are aware of the U.S. Department of Labor's decision concerning the Permanent Labor Certification Program, that is PERM, for certain companies. It should be noted that PERM is distinct from the H-1B visa program. The suspension of PERM application does not by itself affect the validity of H-1B visas or the status of H-1B visa holders and their dependents. Though there could be some impact on the permanent residency or green card process of eligible employees of the affected companies.
1: In more news, the National Statistics Office, NSO, has released a draft guideline for compilation of gross state domestic product, GSDP estimates from expenditure side with the base year 2022-23. The draft guideline provides a uniform and comprehensive framework for compilation of GSDP estimates from the expenditure side across states and union territories, with the objective of ensuring consistency, comparability and methodological standardization under the revised base year framework. It elaborates the concepts, coverage, data sources, estimation procedures and methodologies for compilation of GSDP from the expenditure side, covering the major expenditure components. Now news from the crude oil market. Global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 1.5% down at $102.70 per barrel. West Texas Intermediate crude was also trading 0.9% lower at $90.68 per barrel. At the time of writing this report, how would you rate this minor correction? Do you see the midterm elections stalling any action by the U.S. on Iran, and therefore we are seeing this sort of a relief rally in prices?
0: Oh, no, that's what we are being given in to believe. And hopefully that'll a conflict doesn't even materialize later. These are not the kind of crude oil prices that that'll help us. It's actually quite damaging. So the sooner the crude oil prices go down, the better it gets.
2: इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के क्लोजिंग रेट के अनुसार 24 कैरेट सोने का मूल्य 1.2% के साथ 1,49,430 रूपये प्रति दशमलव पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 1.8% ऊपर चढ़कर 2,21,109 रूपये प्रति किलोग्राम पर दर्ज हुई।
1: द न्यू मर्चेंट डिस्काउंट रेट फ्रेमवर्क विल कम इन इफेक्ट फ्रॉम द 15th ऑफ दिस मंथ। अंडर दिस फ्रेमवर्क यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ट्रांजैक्शंस ऑफ अप टू 2,000 रूपीज विल अट्रैक्ट जीरो MDR. According to the National Payments Corporation of India, UPI's global footprint has expanded significantly with live payment services active across 11 foreign countries.
2: Udyan, is karyakram mein shamil hone ke liye hamare sath charcha ke liye aapka bahut bahut dhanyawad.
0: Dhanyawad.
1: And before we close the reminder of the headlines, benchmark domestic stock market indices rebound. Sensex jumps over 1%. Nifty settles above 22,500 mark. Asian stock markets end mixed and global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra. For now,
6: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खूबसूरत से गीत के साथ।

0: विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का पावर हाउस है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा व बालों को स्वस्थ रखता है। प्रतिदिन आंवले का सेवन आपको स्वस्थ बनाए रखता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: मिलेट्स प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो कि गेहूं का एक उत्तम पौष्टिक एवं फाइबर युक्त विकल्प है। मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि ग्लूटेन फ्री अनाज है, जिनका उपयोग रोटी, दलिया और खिचड़ी आदि बनाने में किया जा सकता है।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों का पराठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही ये आपको भरपूर ऊर्जा देती है। सही मात्रा और सही विधि के लिए आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूरी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: श्री अन्न यानी बाजरा, ज्वार, चौलाई आदि सुपाच्य, सुरक्षित और स्वास्थ्य वर्धक है। बच्चों के आहार में बाजरे को शामिल करने से कमजोरी और दुबलेपन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम यानी TVK ने भी दारापुर और मदुरांतकम सीट जीत ली है। पुदुचेरी की तट्टा नचावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजयी रही। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम की नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों की सेहत, पोषण और सर्वांगीण विकास पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास पर दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंडिमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि CJP ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से रात 9 बजे से आज 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने कहा कि हालात के हिसाब से आज सुबह 6 बजे से डायवर्जन लागू हो जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आज कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय के पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। क्रिकेट में रांची में खेले गए दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। जीत के लिए 250 रन का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने 6 विकेट और 9 गेंद

बहुत कुछ बचा है जीवन में, बहुत कुछ बचा है जीवन में। अभी तक मैंने ताजमहल नहीं देखा, उस नए कवि की किताब नहीं पढ़ी, पहाड़ों की ओर नहीं गई, समंदर को देख उसे आसमान से नहीं तौला, हवाई जहाज से नीचे नहीं झांका, बादलों को खाकर उनका स्वाद नहीं जाना, और तुम्हें ही नहीं बताया कि तुमसे मैं अब तक प्रेम में हूँ। सौदश्लोक मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12 और 20 सेकेंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

प्यार की गलियां हों और आपका साथ हो तो हम नई मंजिलों की ओर ज़रूर बढ़ते हैं। तो चलिए फिर इसी मंजिल की ओर हम बढ़ते हैं और पहुंचने की कोशिश करते हैं। कभी मुझे ऐसा लगता है कि कभी आपने ऐसा सोचा है या नोटिस किया है कि रेडियो पर बात करना कितना आसान है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तब होती है जब इंसान को खुद से बात करनी होती है। और ये खुद से बात इंसान तब करता है जब वो रात में तन्हा होता है, अकेला होता है, कभी खिड़की पर बैठकर तो कभी छत पर तारों को देखते हुए हम अपने ही दिल से बातें करने लगते हैं, है ना? ठीक इस अगले गीत की तरह।

चंद्रमा झूमने के अलावा रात का एक और कमाल होता है, और वो है कि रातें हमें हमारी यादों से मिलवाती है ना। कभी हमें हमारा बचपन याद आता है, कभी हमें हमारी मोहब्बत याद आती है, तो कभी कभी हमें हमारी दोस्ती याद आती है, जिसमें हम यादें एक तरीके से एक बारिश की तरह होती हैं, जिसमें हमारा मन भीगता है। और जब हमारा मन भीगता है, हमारी भावनाएं भीगती हैं, और ये जो भावनाओं की सीलन है, वो हमारे अस्तित्व को, हमारे पर्सनैलिटी को और ज़्यादा सुमधुर बना देती है। अगला गीत आप ही के लिए।

मैं जब भी इस गाने को सुनती हूँ ना तो मेरे दिलो दिमाग में कुछ तस्वीरें जरूर बनती हैं, और मुझे मालूम है कि जब भी आप भी इस गाने को जब भी सुनते होंगे तो आपके दिमाग में भी किसी ना किसी इंसान की इमेज जरूर बनती होगी। अब जब उसकी उस इंसान की इमेज बन चुकी है तो फिर उसे थोड़ा सा याद भी कर लिया जाए, क्योंकि हम इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा खास इंसान हम सबकी जिंदगी में होता है जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो हमारा कोई दोस्त हो सकता है, कोई हमसफर हो सकता है, और कोई भी हो सकता है। जब दिल कोई इंसान हमें हमारे सफ़र को हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है, उसे पहले से बेहतर बनाता है, तो उस ख़ास इंसान की तारीफ भी की जानी चाहिए, उसे बताया भी जाना चाहिए कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है। क्योंकि ऐसा करने से हमें भी अच्छा लगता है और सामने वाले को भी अच्छा लगता है। और अगर ये बात नीले नीले आसमान के नीचे बैठकर कही जाए तो क्या होगा। अगला गीत आप ही के लिए।

मेरा तुम्हारे शहर से गुजरना, मेरा तुमसे होकर गुजरना है। मेरा तुम्हारे शहर से इश्क, मेरा तुमसे इश्क है। बहाने ढेरों रहे होंगे, कोई समंदर, कोई रास्ता, कोई इमारत, वहाँ का मौसम या फिर पराठे और चाय। उन सतही बहानों में मेरे उस शहर से मोहब्बत की अकेली वजह तुम थे। मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 12:42 और 45 सेकेंड, और आप सुन रहे हैं निशिगंधा।

मैं बताऊं मोहब्बत क्या है? मोहब्बत है एक ऐसी इबादत जो हम किसी और के लिए करते हैं, अपने हिस्से का दर्द किसी और के दिल में धड़कता हुआ महसूस करते हैं, उसे कहते हैं मोहब्बत। वैसे कहने को तो इतिहासकार ने कहा है कि ये सदियों पुराना है, वैज्ञानिक कहते हैं कि ये एक दिमागी केमिकल है, पर दिल वालों से पूछो तो वो कहेंगे कि मोहब्बत

किसने शुरू की ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जिसने भी शुरू की है उसने उससे इस संसार को खूबसूरत ही बनाया है, एहसास को सुंदर ही बनाया है। कोई ऐसा एहसास जो इस सृष्टि को, इस धरती को खूबसूरत बनाता है, तो वो एहसास है मोहब्बत। इसलिए इस मोहब्बत को हमेशा सलाम। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत आप तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज में।

वैसे कभी कभार तारीफ कर देनी चाहिए, क्योंकि तारीफ करने से हमें भी अच्छा लगता है और सामने वाले को भी अच्छा लगता है। और वैसे भी प्यार में कंजूसी अच्छी बात नहीं होती, तो इसलिए तारीफ करते रहने चाहिए।

आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त है समाचारों का। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन

0: या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है, जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि सीजेपी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से रात 9 बजे से आज 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में यातायात के मार्ग में परिवर्तन के लिए परामर्श जारी किया है। पुलिस ने कहा कि हालात के हिसाब से आज सुबह 6 बजे से मार्ग परिवर्तन लागू हो जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आज कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। चुनाव आयोग ने व्यक्तिगत मतदाताओं द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म 7 आवेदनों की संख्या तय कर दी है। इसके तहत दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान ज्यादा से ज्यादा 10 आवेदन और मतदाता सूची को लगातार अद्यतन करने की प्रक्रिया के दौरान हर महीने 5 आवेदन ही भरे जा सकते हैं। ओडिशा में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 10 स्थानों पर छापेमारी की है। ईडी अधिकारियों ने बताया कि ये मामला पिछले साल अक्टूबर में ओडिशा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है और बाद में इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने भी दारापुर और मदुरांतकम सीटें जीत ली हैं। पुद्दुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजयी रही। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम की नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। क्रिकेट में रांची में खेले गए दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। जीत के लिए 250 रन का पीछा करते हुए इंग्लैंड वेस्टइंडीज ने 6 विकेट और 9 गेंद बाकी रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने तय 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 249 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू. वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड. गीत सुहारे प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शमशाद बेगम की आवाज़ के साथ.

फिल्म का नाम मिस्टर एंड मिसेस 55, आवाज़ थी शमशाद बेगम की और संगीत ओ पी नैयर का, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। अगर इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म आई थी 1955 में और ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसका निर्माण और निर्देशन किया था गुरुदत्त साहब ने और इस फिल्म की पटकथा लिखी थी अबरार अल्फी ने। और ये फिल्म सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी मधुबाला और गुरुदत्त साहब ने। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

फिल्म पारसमणि से सुन रहे थे आप ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, और गीतकार थे असद भोपाली साहब। और ये फिल्म आई थी 1963 में, और इस फिल्म का निर्देशन किया था बाबू भाई मिस्त्री ने, और ये फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही थी। और इस फिल्म को संगीत दिया था इस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस फिल्म को तमिल में मायामणि नाम से 1964 में रिलीज़ किया गया था। अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

0: फिल्म का नाम बहारें फिर आएंगी, फिर भी आएंगी, और आवाज़ थी महेंद्र कपूर की, संगीत ओपी नैयर साहब का, और गीतकार थे शेवेन रिजवी साहब। इस फिल्म को निर्मित किया था गुरुदत्त साहब ने और निर्देशित किया था शहीद लतीफ ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी माला सिन्हा, धर्मेंद्र, तनुजा और रहमान ने। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में।
1: ये रातें, ये मौसम।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:37 और 38 सेकेंड, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत फिल्म बरसात की रात से।

आशा जी, सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू की आवाज में सुना आपने ये सदाबहार गीत, फिल्म का नाम बरसात की रात। संगीत था रोशन का और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। ये फिल्म आई थी 1960 में और ये एक रोमांटिक फिल्म के साथ साथ एक संगीत आधारित फिल्म थी, संगीतमय फिल्म थी, जिसका निर्देशन किया था पीएल संतोषी ने और निर्माण किया था आर चंद्र ने। फिल्म में मधुबाला, भरत भूषण और श्यामा ने अभिनय किया था। और ये फिल्म आर्थिक रूप से काफ़ी सफल रही थी और 1960 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में।

वक्त हुआ है 1:54 और 27 सेकेंड। 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ मंजू। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत मुगले आजम फिल्म से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि सीजेपी ने पहले

0: पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से रात 9 बजे से आज 45 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में यातायात के मार्ग में परिवर्तन के लिए परामर्श जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि हालात के हिसाब से आज सुबह 6 बजे से मार्ग परिवर्तन लागू हो जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आज कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। कल शाम विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। चुनाव आयोग ने व्यक्तिगत मतदाताओं द्वारा भरे जाने वाले Form 7 आवेदनों की संख्या तय कर दी है। इसके तहत दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान ज्यादा से ज्यादा 10 आवेदन और मतदाता सूची को लगातार अपडेट करने की प्रक्रिया के दौरान हर महीने 5 आवेदन ही भरे जा सकते हैं। आयोग ने यह निर्णय इसलिए लिया ताकि कोई एक मतदाता बड़ी संख्या में आपत्तियां न दर्ज करा सके। ये सीमा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फॉर्म भरने पर लागू होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिल गावित्री कजगम TVK ने भी दारापुरम और मदुरांतकम सीटें जीत ली हैं। पुद्दुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया NR कांग्रेस विजयी रही। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम की नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा NDA के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए NDA की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन आज से झांसी में किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 21 अक्टूबर तक खेली जाएगी। प्रतियोगिता के 3 डिवीजनों में 29 टीमें मुकाबला करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। BJP has registered massive victories in both assembly constituencies of West Bengal Nandigram in East Midnapore district and Riji Nagar in Murshidabad district, where by-elections were held. With victories in both these constituencies, the BJP's tally in the West Bengal Assembly has risen to 209 seats. BJP also won the Nagaon Lok Sabha by-election in Assam. In Puducherry, All India NR Congress won the won the Thatan Chavri seat, while in Tamil Nadu, the ruling Tamilga Vetri Kazhagam secured victories in Mudanthakam and Dharampuram seats. Prime Minister Narendra Modi congratulated the BJP candidates and praised party workers, saying the results reflected public support for the BJP NDA's good governance agenda. He also congratulated the AINRC,

कितनी बार कहूं और कैसे कहूं याद आ रही है, कितनी बार कहूं और कैसे कहूं याद आ रही है कि तुम्हें भी आने लगे मेरी उतनी ही याद जितना मैं तुम्हें करती हूं। कितनी बार कहूं चले आओ कि तुम चले आओ, बिना ये सोचे कि क्या कहेगी ये दुनिया।

मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त है 2:12 और 22 सेकंड, रात सुरमई में आप सभी का स्वागत। तो चलिए फिर कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस सदाबहार गीत के साथ।

ये तो सच बात है कि दिल की बज़्म में जब भी आपसे मुलाकात होती है तो मन खुशी से झूम उठता है, क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता ही ऐसा है जहां हम जुड़ते हैं दिल से दिल तक। और जब बात दिल से दिल तक पहुंचती है तो रिश्ता अपने आप गहरा हो जाता है। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

मेरा नाम तो मंजू है और आप मुझे सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। कहना आपसे ये था कि जब दिल निगाहों में अटका है, दिल आंखों में अटका है, तो फिर उस दिल को कहीं भी चैन नहीं पड़ता। अगला गीत फिर से लेता, अगला गीत फिर से किशोर कुमार की आवाज़ में।

जिस कदर मुझे उसे देखने की तड़प होती है, जिस कदर मुझे उसे देखने की तड़प होती है, ऐसा भी हो सकता है कि उसे बनाने के बाद जो मिट्टी बची हो, शायद उससे मेरी आंखें बनाई गई हो।

100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:39:55 और आप सुन रहे हैं रात सुरमई। अगला गीत रफी साहब और आशा जी की आवाज में।

अगर मैं अपनी बात करूं तो इशारों इशारों में दिल लेने का जो हुनर है वो मैंने आपसे सीखा है, और इस मामले में मैं आपको ही अपना उस्ताद समझती हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि प्यार इशारों में ही बयां होना चाहिए, और इशारों में ही जो प्यार बयां होता है वो बेहतर होता है, क्योंकि शब्दों में जब इसे बयां किया जाता है या शब्दों में प्यार को जब कहा जाता है तो इसका फसाना बनने का डर सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। अगला गीत आप ही के लिए।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगे फिरोज। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि CJP ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से रात 9 बजे से आज 45 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इधर रेल

0: मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने कहा है कि हालात के हिसाब से सुबह 6 बजे से डायवर्जन लागू हो जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आज कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। कल शाम विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। चुनाव आयोग ने व्यक्तिगत मतदाताओं द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म 7 आवेदनों की संख्या तय कर दी है। इसके तहत दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान ज्यादा से ज्यादा 10 आवेदन और मतदाता सूची को लगातार अपडेट करने की प्रक्रिया के दौरान हर महीने 5 आवेदन ही भरे जा सकते हैं। आयोग ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि कोई एक मतदाता बड़ी संख्या में आपत्तियां न दर्ज करा सके। ये सीमा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फॉर्म भरने पर लागू होगी। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से आज नई दिल्ली में किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित करेगी। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कानून लागू करने में आ रही चुनौतियों की पहचान और अगले 10 वर्षों में किशोर न्याय तथा बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज झारखंड के देवघर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति देवघर के BBMT अस्पताल में आयोजित सैन्य संपर्क मेले का भी दौरा करेंगे। मौसम विभाग ने केरलम, माही, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। BJP has registered massive victories in both assembly constituencies of West Bengal Nandigram in East Midnapur district and Rejinagar in Murshidabad district, where by-elections were held. With victories in both these constituencies, the BJP's tally in the West Bengal assembly has risen to 209 seats. BJP also won the Nagaon Lok Sabha by-election in Assam. In Puducherry, All India NR Congress won the Thattanchavady seat, while in Tamil Nadu, the ruling Tamil Gavetri Kazhikam secured victories in Madurotaram and Dharapuram seats. Prime Minister Narendra Modi congratulated the BJP candidates and praised party workers, saying the results reflected public support for the BJP NDA's good governance agenda. He also congratulated the AINRC for its victory in Puducherry. Union Home Minister Amit Shah said the NDA's by-election and local body poll victories show that the people have completely rejected the India Alliance. Prime Minister Narendra Modi has called for greater focus on the health, nutrition and overall development of adolescent girls. Chairing the valedictory sessions of the 2-day National Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi yesterday, Mr. Modi emphasized on Jan Bhagidari and called for making Anganwadis as

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11 और 13 सेकंड। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। रियाज इस्माइल साहब की एक गजल है जिनके कुछ अशार आपकी खिदमत में। कहते हैं कि कहां गिरफ्त में अब माँ हो।

उस साल के मौसम कहाँ गिरफ्त में अब माहों साल के मौसम बिखरते जाते हैं तेरे विशाल के मौसम। तेरे जवाब के वक्फे तवील कितने हैं, तेरे जवाब के वक्फे तवील कितने हैं, गुजरते जाते हैं मेरे सवाल के मौसम। हर एक फूल कली को बुला रहा है करीब, हर एक फूल कली को बुला रहा है करीब, चमन में आए हैं अब के कमाल के मौसम। और बात जब फूल और कली की हुई है तो फिर ऐसे ही गीत के साथ आज के इस सफर का आगाज करेंगे, और वो नगमा है एक बेहद खूबसूरत फिल्म आए दिन बहार के से। ये फिल्म आई थी 1966 में और आवाज़ें हैं लता जी और महेंद्र कपूर साहब की। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी साहब ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब का। तो आइए आज के इस हमराही के इस सफर में सबसे पहला नगमा वही आपकी खिदमत में।

लता जी, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ों में ये बेहद खूबसूरत नगमा था फिल्म आए दिन बहार के। ये फिल्म आई थी 1966 में। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब की जोड़ी ने। अब सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। महफिल है हमराही की और मैं हूँ आज आपका हमराही फिरोज। दोस्तों, कहते हैं कि मोहब्बत को लफ्जों की जरूरत नहीं होती। कभी एक नजर, कभी हल्की सी मुस्कुराहट और कभी किसी पर्दे के पीछे छुपी हुई वो शरारत जो दिल को बेचैन कर जाए। अजीब है ना ये इश्क भी। जिसे देखने की तमन्ना हो उसी से नजरें चुराने का मन करता है और जिसे नजरें मिल जाएं तो सारी दुनिया धुंधली लगने लगती है। जरा सोचिए, एक खूबसूरत शाम हो, खिड़की से आती ठंडी हवा हो, चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा हो और सामने कोई ऐसा हो जिसे आप बहुत कुछ कहना चाहते हो मगर लफ्ज हैं कि होठों तक आकर ठहर जाते हैं, तो दिल बस इतना ही कहता है,

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही में। और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं आपका हमराही फिरोज। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 3:32 और 42 सेकेंड। तो दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगाम के ज़रिए अपने संदेशों के ज़रिए। और उसके लिए आपको करना ये है कि आप हमें मेल कर सकते हैं और मेल के ज़रिए आप अपने दिल की बात हम तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com। इट्स fmgoldairdaily@gmail.com। आप अपने पैगाम हम तक पहुंचाएं, तब तक मैं आपको लिए चलता हूं अगले नगमे की तरफ। कहते हैं मोहब्बत की अपनी एक जबान होती है जिसमें लफ्ज कम और इशारे ज्यादा बोलते हैं। कभी आंखों की शरारत, कभी होठों की मुस्कुराहट, तो कभी नजरों का चुपके से मिलना। बस दिल अपने हाथों से निकल जाता है। जरा सोचिए महफिल में सैकड़ों लोग हों मगर नजरें सिर्फ एक चेहरे को तलाश रही हों और जब वो चेहरा सामने आ जाए तो आपको लगे कि अब कुछ इशारे हो जाएं। इसी नटखट अंदाज, इसी हसीन एहसास और इसी दिलकश अदायगी की याद दिलाता है फिल्म कश्मीर की कली का ये बेहद खूबसूरत नगमा इशारों इशारों में दिल लेने वाले। मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी की बेहद खूबसूरत आवाज़ें जिसको लिखा है SH बिहारी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है OP नैयर साहब ने। तो आइए इस सफ़र पर चलते हैं और खो जाते हैं उन पुरानी यादों की दुनिया में।

इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। जब इश्क होता है तो ये हुनर अपने आप ही पैदा हो जाती है। कहते हैं कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्जों में बयान करना आसान नहीं होता। दिल खामोश रहता है मगर उसकी धड़कनें किसी खास शख्स का नाम बार बार दोहराती हैं। कभी चांदनी रात में, कभी तन्हाई के आलम में, अचानक किसी की याद आ जाए तो लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो और दिल धीरे से कह उठता है, काश ये खूबसूरत लम्हा हमेशा के लिए मेरा हो जाए। दोस्तों, मोहब्बत की इसी पाकिजगी, इसी कशिश और इसी रूहानी एहसासात को बयां करता है फिल्म कभी कभी का ये बेहद खूबसूरत नगमा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। साहिर लुधियानवी साहब के अल्फाज और खयाम साहब का दिलनशी संगीत, मुकेश और लता जी की बेहद खूबसूरत सुरमई आवाज़ें इस गीत को एक ऐसा यादगार एहसास बना देती है जो हमेशा के लिए अमर हो गया हो। तो आइए अपनी यादों की झरोखे को खोलिए और डूब जाइए मोहब्बत की इस हसीन दुनिया में इस बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। लता जी और मुकेश साहब की आवाजों में ये नगमा था फिल्म कभी कभी से, और ये फिल्म आई थी 1976 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, महफिल है हमराही की। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा मिलता है जो हमारी छोटी सी दुनिया को मोहब्बत के रंगों से भर देता है। उसकी मुस्कुराहट में सुकून, उसकी बातों में अपनापन और उसकी यादों में एक अजीब सी मिठास होती है। मगर अफसोस, हर खूबसूरत कहानी का अंजाम मिलन ही हो, ये जरूरी भी नहीं। दोस्तों, आज का ये अगला नगमा हम एक ऐसे ही मासूम अफसाने की याद दिला रहा है, जहां एक गुल है और एक बुलबुल। दोनों की अपनी दुनिया है, अपने अफसाने हैं, अपने ख्वाब हैं, और दिल में मोहब्बत का नाजुक सा एहसास है। फिल्म जब जब फूल खिले का ये बेहद खूबसूरत नगमा, एक था गुल और एक थी बुलबुल, मोहम्मद रफी साहब की दिलकश आवाज, आनंद बख्शी के अल्फाज और कल्याण जी आनंद जी का बहुत ही खूबसूरत यादगार संगीत। कहते हैं कुछ यादें वक्त के साथ धुंधली नहीं होती, बल्कि दिल के और करीब आ जाती है, और ये नगमा कुछ ऐसा ही है। आपको लेके जाएगा पुराने यादों के सफर पर, जब आपकी मोहब्बत परवान चढ़ रही थी तो दूसरी तरफ उसमें कुछ ऐसे भी बात आ गई जो नाकामियों में बदल गई।

फिल्म जब जब फूल खिलेगा ये बेहद खूबसूरत नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और नंदा की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कहते हैं जब दिल सच्ची मोहब्बत से मिलते हैं तो सिर्फ दो इंसान नहीं बल्कि दो ख्वाब, दो एहसास और दो धड़कनें एक कहानी बन जाती हैं। ज़रा सोचिए, चांदनी रात हो, हवाओं में हल्की सी खुशबू हो और सामने हो वो शख्स जिसका इंतज़ार दिल ने न जाने कितनी रातों से किया हो। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा आपके लिए

0: किशोर कुमार साहब और लता जी की इन्हीं आवाजों के साथ मुझे अब दीजिए हमराही से इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर।
2: कार्यक्रम महिषासुर मर्दिनी, मूल आलेख बानी कुमार, हिंदी रूपांतरण दीप नारायण मिठोलिया, श्लोक पठन बीरेंद्र कृष्ण भद्र, वाचन और संगीत संयोजन पंकज कुमार मल्लिक।

स्थान पर नाभिकमल से जाग उठे वावी कल्प के सृष्टि विधाता ब्रह्मा, परंतु विष्णु के कर्णमल से उत्पन्न मधुकैटव असुर ब्रह्मा के कर्म और अस्तित्व के नाश के लिए उद्दत हो उठा। तब पद्म योनि ब्रह्मा ने योग निद्रा मग्न सर्वशक्तिमान विश्व पिता विष्णु को जागृत करने हेतु जगत की स्थिति संहार कारिणी विश्वेश्वरी जगत जननी हरिनेत्र निवासिनी निरुपमा भगवती को स्तवन मंत्रों के द्वारा उद्बोधित करने

गबन से प्रबुद्ध हो विष्णु के अंग प्रत्यंग से बाहर प्रकट हो आई भंग हुई भगवान विष्णु की योग निद्रा तत्काल उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया और छिन्न कर डाला मधुकैटव का मस्तक ब्रह्मा पुनः ध्यान मग्न हो बैठे इधर दुर्धर्ष दैत्यराज महिषासुर के पराक्रम से परास्त हो देवतागण स्वर्गाधिकार से वंचित हुए

ब्रह्मा जी को अपना प्रतिनिधि बना, वैकुंठ में जा देखा भगवान विष्णु और देवाधिदेव भगवान शिव परस्पर आलाप मग्न है। ब्रह्मा जी ने अपने मुख से कह सुनाई महिषासुर के दुर्विषह अत्याचार की करुण कहानी। स्वर्ग भ्रष्ट देवताओं का विषाद सुनते ही परम शांति योगी वर महादेव का सुगौर मुखमंडल क्रोध से रक्त कमल के समान लाल हो उठा। शंख चक्र गदा पद्म धारी नारायण की तन

महाशक्ति के आह्वान से आकाश में निनादित हो उठे महाशंख, विश्व योनि विष्णु और महारुद्र के शरीर से प्रस्फुटित हो निकली तेज की परम ज्योति, ब्रह्मा और देवगण के मुखमंडलों से निकल चला तेज, पर्वत प्रमाण ज्योति पुंज ने प्रज्वलित उताशन के तुल्य देदीप्यमान किरणों से दिग्मंडल को पूर्ण कर दिया, तेज रश्मिया एकत्रित हो परमा सुंदरी रूपवती दिव्य देवी मूर्ति में परिणत हुई।

तेज पुंज से प्रकाशित उनका अभिनव आविर्भाव हुआ महिषमर्दिनी रूप में। देवी सज्जिता हुई विचित्र रूपा रणचंडी रूप में। हिमाचल ने सिंह वाहन दिया विष्णु ने चक्र पिनाक पाणि शंकर ने शूल यम ने दंड काल देव ने सुतीक्ष्ण खंग चंद्र ने अष्टचंद्र शोभा से युक्त चर्म सूर्य ने धनुर्बाण विश्वकर्मा ने अभेद वर्म ब्रह्मा ने अक्षमाला और कमंडल कुबेर ने रत्न हार दे डाला सभी देवताओं ने। महादेवी को नाना अलंकारों से अलंकृत एवं विविध प्रहरणों से सुसज्जित कर उनसे असुर विजय यात्रा के निमित्त प्रार्थना की। रणदुंद विध्वनि से विश्व चराचर निनादित हो उठे यात्रा के पूर्व दुर्नर

रोहिणी मूर्ति का परिग्रह धारण कर फूका अपना शंख, देवी के रणाहवान का अनुसरण कर ससैन्य दौड़ परा महाबलशाली महिषासुर। असुर राज देख स्तंभित हुआ, तेजस्विनी महालक्ष्मी की तेज प्रभा से त्रिलोक ज्योतिर्मय हो उठे। उनका मुकुट आकाश का चुंबन करने लगा, पदभार से सारी पृथ्वी नत हो गई और धनुष्टंकार से प्रकंपित हो उठा संपूर्ण रसातल। देव सेनापति ने महाशक्ति के जय मंत्र के गुण से

देवी के साथ महिषासुर का भीषण संग्राम छिड़ा, देवी के अस्त्र प्रहार से दैत्य सेना छिन्न भिन्न हुई। महिषासुर क्षण क्षण पर रूप परिवर्तन कर अनेक प्रकार के कौशल का करने लगा विस्तार। महिष से हस्ती बना सिंह रूपी दैत्य की रण रमत्वता को देवी ने क्षण में प्रशमित किया। तत्काल वे इंद्रजालिक नयन विमोहन पुरुष वेश में प्रकट हुआ। देवी के हाथों प्रत्याख्यान हो वे पुनः महिष मूर्ति धारण

महिषासुर मर्दिनी महालय के पावन अवसर पर आप सुन रहे थे देवी आराधन का ये विशेष कार्यक्रम। मूल आलेख बानी कुमार, हिंदी रूपांतरण दीप नारायण मिठोलिया, श्लोक पठन बीरेंद्र कृष्ण भद्र, वाचन और संगीत संयोजन पंकज कुमार मल्लिक।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 5:30 और 47 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फिरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आप सुन रहे हैं अपने दिन की पहली खूबसूरत दस्तक भोर सुहानी, जहाँ हर सुबह एक नई उम्मीद, एक नया ख्वाब और जिंदगी को बेहतर बनाने का एक नया मौका लेकर आती है। दोस्तों, कहते हैं कि सुबह सिर्फ सूरज के निकलने का नाम नहीं बल्कि अपने भीतर की रोशनी को पहचानने का भी नाम है। बीते हुए कल की परेशानियों को अलविदा कहिए, दिल में सुकून रखिए और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान सजाइए। याद रखिए, जिंदगी में कामयाबी हमेशा बड़े कदमों से नहीं मिलती, कभी कभी छोटे छोटे प्रयास भी हमें मंजिल के बेहद करीब लेकर जाते हैं। इसीलिए अपने बीते हुए कल को याद करते हुए आने वाले कल को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। मुस्कुराइए, हंसिए और जिंदगी को आगे बढ़ाइए। और इसी खूबसूरत एहसास को आवाज देता है एक बहुत ही प्यारा नगमा, धीरे धीरे सुबह हुई, जिसमें परिंदों की चहचहाहट ये बता रही है कि सुबह हो गई है, जल्दी से जग जाइए और एक नए सफर का आगाज कीजिए हमारे साथ। तो आइए इस नगमे के साथ अपने दिल का आगाज करते हैं मोहब्बत और सकारात्मक सोच से। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।